0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Listener MI, back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपका इरादा तो ये था कि आप अपनी बेस्टी और अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इकट्ठे शिप करोगे, लेकिन इन द प्रोसेस यू एंडेड अप गेटिंग नॉटी विद दिस फ्रेंड. तो ये था कि आप अपनी बेस्टी और अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इकट्ठे शिप करोगे, लेकिन इन द प्रोसेस यू एंडेड अप गेटिंग नॉटी विद दिस फ्रेंड. आपको क्या सोच कह रहे थे आप?
2: द सीक्रेट बॉक्स.

0: कुछ बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ.
1: एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदात के दिन?
0: सो यार क्या हुआ कि आई वॉज ऑन अ डेटिंग ऐप,
1: हाँ
0: सो आई मेट दिस गर्ल एंड शी वॉज लाइक कि यार ये है वो है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक स्पेन, आई लाइक दैट. तो मैंने बोले कि आई नो फ्रेंच, आई नो स्पेनिश ऑल्सो, आई बीन देर मेनी टाइम्स.
1: हाँ ये
0: अब
1: सच था कि
0: लेकिन
1: नहीं?
0: पंगा नहीं यार, मैं झज्जर से आगे नहीं गया हूँ. हरियाणा में रहते हैं मेरे चाचा जी, उनके यहाँ जाता हूँ मैं लास्ट. मुझे नहीं पता स्पेन है कहाँ असल में, वो तो मैं फिल्म देखता रहता हूँ तो मुझे समझ रहता है. और जो लड़की है जो मुझे मिली है वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा वो है, वो होते हैं ना जो जाट टाइप के लोग जो थोड़ा सा कम समझते हैं चीजों को
1: ऐसे नहीं बोल
0: थोड़े.
1: सकता यार, तो इसे काटना पड़ेगा बस. वो उन
0: हाँ
1: टाइप के लोग हैं जो मतलब
0: हाँ
1: थोड़ी सी, जो भी
0: जी
1: बोल, जाट नहीं बोल सकता, ठीक है? हाँ
0: हाँ. जो जो लड़की मुझे मिली है ना वो एक्चुअली उनको लैंग्वेजेस का उनको पता नहीं है ज्यादा, मतलब वो
1: अच्छा
0: समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ठीक है.
1: हाँ
0: सो वेन एवर वी गेट इंटीमेट ना नो,
1: हाँ
0: सो शी आस्क्ड मी टू स्पीक इन स्पैनिश, रशियन, बट मुझे खुद नहीं पता कि स्पैनिश कौन सी होती है, रशियन कौन सी होती है. तो हम खरसो क्रोजो जो जो मैंने फिल्मों में सुना ना, मेरे को पता, मैं खाने का नाम ले रहा हूँ, बनाने का नाम ले रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट एंड शी लाइकिंग इट. तो मैं समझ नहीं पा रहा कि शुड आई टेल हर और हाँ, थोड़ी देर में ऐसे फ्लो फ्लो में मैं चीज केक ना बोल दूं, मुझे वो डर है बस. क्योंकि वो इंग्लिश होता है.
1: थैंक्स फॉर टेलिंग मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था चीज के किसन इंग्लिश. लेकिन लाइक एक सैम्पल तो दीजिए हमारे जनता को और मुझे कि जब लाइक मान लीजिए.
0: बेबी.

0: नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन। तुमने

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैंने अपने फोन पर तुम्हारा नाम डीजी रखा है एंड आई वाज लाइक डीजी बट मेरा नाम तो रोशी है, यू कैन बेस्ट कॉल मी मिर्ची रोशी बट डीजी क्या होता है? एंड अ गाय गोज अहेड एंड सेज डीजी इज शॉर्ट फॉर ड्रीम गर्ल, तो मेरी ड्रीम गर्ल जो हो. एंड आई वाज लाइक मन में मैं ये सोच रही हूँ कि आई डोंट नो वेदर टू फाइंड दिस क्यूट और फाइंड दिस क्रीपी, क्योंकि मैं इस बंदे को डेटिंग ऐप पर मिली थी. वी ओनली जस्ट चैटेड फॉर लाइक 5 days. हमने कभी फोन पर भी बात नहीं की है, सिर्फ डेटिंग ऐप पर कॉन्वर्सेशन की है. हमारे पास एक दूसरे का फोन नंबर नहीं है एंड ही इज ऑलरेडी कॉलिंग मी हिज डीजी. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड अप्रिशिएट इट और रन फॉर माई लाइफ. आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इस बंदे को ब्लॉक या इस बंदे के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज? एंड वट एवर द आंसर टू दैट इज, विच आई एम रियली क्यूरियस टू नो बाय द वे, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, वी विल गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Bro, आपका एक्स कभी आपका स्टॉकर बना है? I'm genuinely asking you this question because मेरा एक एक्स है जो बीच में ना ऐसे हमारा we lost touch and all and then he got back in touch with me because उसकी शादी थोड़ी सी on the rocks थी whatever और उसके बाद वो मुझे लाइक रोज फोन करने लगा एंड एक पॉइंट के बाद आई डिडंट अप्रिशिएट इट तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी डायरेक्ट पर्सन लाइक दिस व्हेन आई एम टर्निंग पीपल डाउन और मैं उसके कॉल्स अवॉइड करने लग गई. फिर ही रिजॉर्टेड टू सेंडिंग मी मैसेजेस हर तीसरे दिन कोई ऐसा सवाल पूछते हुए जिसका जवाब मुझे उसे देना पड़ा लाइक यू नो डू यू नो अ गुड डॉक्टर क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे दिल की रिदम्स ठीक नहीं है. तो ऑब्वियसली आप सामने वाले से पूछोगे क्यों क्या हो गया एंड देन ही'ड बी लाइक कि नहीं सब ठीक है ऐसे अजीब सी उदासी हो रही है एंड आई एम लाइक यार आई कैन टेल दैट यू आर यूजिंग ऑल दीज प्लॉयज ताकि मैं तुझसे बात करूं और मुझे तुझसे बात नहीं करनी है. अब जितनी बार इस बंदे का मैसेज आता है ना आई एम नॉट इवन किडिंग यू मेरी हालत खराब हो जाती है बिकॉज ये ना स्लोली स्टॉकर प्रपोर्शंस ले रहा है मेरी जिंदगी में. मैं तो इसे ब्लॉक करने वाली हूं लेकिन अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है एंड यू वॉन्ट टू कंपेयर नोट्स विद मी वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड मिस्टर एक्स अगर आप ये सब सुन रहे हो प्लीज डोंट हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. इनफैक्ट डोंट हिट मी अप एट ऑल अदरवाइज आई विल बी कंपेल्ड टू हिट यू. ऑन दैट नोट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग EKG एंड फ्लेबोटमी मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 or visit aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आपके डार्क ग्लासेस सुंदर, सस्ते, टिकाऊ भी हैं, मतलब आपने 150 रुपए के खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब पहली डेट पर जा रहे हो, मेक श्योर दैट इट्स अ डेट लाइक इन द लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग. वो डार्क ग्लासेस पहनकर जाना, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से जैसे ही तनु काला चश्मा जचदा है, इट एक्चुअली मेक्स यू लुक सेक्सियर एंड हॉटर. सो ट्राई दिस टिप एंड ट्रिक, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे हिट अप कर सकते हैं इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी मंगेश है. हाय बेब, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू रोशी?
1: आई एम वेरी गुड. आपने मुझे कहा था दैट यू हैव अ कन्फेशन.
2: राइट नाउ आई डोंट हैव अ कन्फेशन, राइट नाउ आई नीड योर एडवाइस.
1: बताओ ना.
2: द थिंग इज कि नो, आई एम स्टडिंग इन दिस बी स्कूल डूइंग माय MBA, एंड देयर आर मेनी गर्ल्स, एंड दिस वन गर्ल आई लाइक. सो व्हाट हैपनिंग इज शी इज अ रेटिसेंट टाइप, शी डजंट टॉक टू एनीवन, बट she just talk to me. She does talk to me, matlab it's like a Q&A more type. I ask her, she gives an answer. When I call her to meet, she does come and meet me, and we talk for hours. But you know, it's just there, it's not going forward, and I just wanted to say, how should I go forward? How should I just cross the line and let her know?
1: Honestly, first things first, let's try and figure out ki ye bandi aapke saath sirf achhi dost hai ya is she also interested in you. इसके दो तीन पैरामीटर्स होते हैं. पहले तो हम समझ गए हैं कि आप जब बुलाते हो तो आ जाती है और सिर्फ आपसे बात करती है. सो दीज आर टू वेरी गुड ग्रीन फ्लैग्स कि वो इंटरेस्टेड तो है. बट टू नो कि वो रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, यू विल हैव टू हेल्प मी फिगर आउट अ कपल ऑफ थिंग्स. जब आप लोग इकट्ठे बैठे होते हो, या यू गाइस आर वॉचिंग अ मूवी, या आप कॉफी पी रहे होते हो, तो मान ले अदर साइड है और आपका पैर लग जाता है दूसरे इंसान के पैर से, तो क्या वो अपना पैर हटा लेती है या वो अपना पैर वहीं रहने देती है?
2: नहीं हटाते हैं.
1: सो शी फील्स योर पैर बट शी डज नॉट लाइक पुल हर पैर बैक.
2: या
1: करेक्ट. ओके, रियली नाइस. तो एक काम कर, पहले तो एक दो हफ्ते ये फिगर आउट कर कि जब तू ऐसे लाइक फिजिकल कॉन्टेक्ट करता है कि आंखों में उसके बाल आ रहे हैं, तूने उसके बाल एक झटके में पीछे कर दिए, ठीक है?
2: ओके,
1: जस्ट सी हाउ शी रिएक्ट्स टू दैट. जस्ट ट्राई एंड बिकम मोर इंटीमेट फर्स्ट. और इंटीमेट का मतलब है जहां तू टेबल की दूसरी साइड बैठता है, कभी कभी टेबल के थोड़ा उसके करीब बैठने की कोशिश कर. ट्राई एंड हैव मोर इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस. इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये है कि आपने ऐसे सवाल पूछे जो उसकी जिंदगी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यू नो, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर डैड, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर मॉम. अगर वो खुल के बात कर सकती है, दैट मीन्स कि वो तुझे

वो मेरी रो का एनिवर्सरी भूल गया है, आई डोंट नो इफ आई शुड गेट मैरिड टू हिम और नॉट, एंड आई वाज लाइक ये मैं क्या सुन रही हूँ, व्हाट। हमारे ऑफिस में एक लड़की है हु वाज फाउंड कंप्लेनिंग टू हर फेलो कॉलीग जो साथ में बैठी हुई थी, एंड आई डोंट नो मेरे कान ऐसे हैं, आई एंडेड अप ओवर हियरिंग दैट कॉन्वर्सेशन। वो क्रिप कर रही थी कि उसकी रो का एनिवर्सरी उसका होने वाला पति भूल गया, बिकॉज ही वॉज टू बिजी शॉपिंग फॉर देयर शादी विच वॉज गोइंग टू हैपन 3 months फ्रॉम नाउ, एंड आई वॉन्टेड टू टेल हर कि हो सकता है बेब वो तुम्हारी शादी के लिए इतना एक्साइटेड है कि भूल गया कि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले तुम्हारा रोका हुआ था, बट यू नो वॉट, उसकी कॉलीग जो उसकी दोस्त भी है उसने इस बंदे को साइलेंटली एक टेक्स्ट लिख के भेजा कि तू रोका एनिवर्सरी भूल गया, बहुत बड़ी बात है यार, बंदी बहुत नाराज है एंड जस्टिफाइबली सो। ये रोका एनिवर्सरी क्या वस्तु है, लाइक वॉट इवन People like us who are single, there is no anniversary. साल में एक बर्थडे आता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। आप लोग रोका एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। You guys are living in a totally different dimension. अगर आप भी मेरी तरह सिंगल हैं and just don't know what this is about, I think we should compare notes. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरा बर्थडे आता है 27th August को, एंड नो There is no Roka anniversary. Sorry, there is no anniversary. On that note, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने बोरिंग रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाना चाहते हो, ब्रेनस्टॉर्म करो बिल्कुल ऑफिस की तरह, एक्सेप्ट जिस चीज के बारे में आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है अ लिस्ट ऑफ फैंटेसीज जो आप और आपके पार्टनर दोनों के दिमाग में कभी ना कभी इट हैज क्रॉस्ड योर माइंड. एंड अगर आप दोनों अग्री करते हो दैट दिस इज समथिंग यू बोथ वॉन्ट टू ट्राई आउट टुगेदर, ग्रेट. अगर यू आर कन्फ्यूज कि शायद मे बी नॉट, पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ मे बी वी विल रीविजिट दिस लेटर. इस लिस्ट को बनाना इट सेल्फ इज सो मच फन, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ डिजायर्स यू हैव वो ही अकेले पुट्स यू इन द मूड फॉर लव. ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई आस्क्ड माय बेस्टी टू ट्राई इट विद हर पार्टनर एंड द सक्सेस रिजल्ट वाज 100%. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में भी ये ट्राई करके देखना चाहिए. वेदर इट्स अ न्यू रिलेशनशिप और नॉट दैट डजंट मैटर बिकॉज हु डजंट लाइक स्टेपिंग अप द हीट अ लिटिल बिट. नहीं, इसे ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू मुझे थैंक यू बोलने के लिए. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHI. So go ahead and hit me up, and while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपका इरादा तो ये था कि आप अपनी बेस्टी और अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इकट्ठे शिप करोगे, लेकिन इन द प्रोसेस यू एंडेड अप गेटिंग नॉटी विद दिस फ्रेंड. आपको क्या सोच क्या रहे थे आप?
2: The secret box.
1: Anyway, whatever you were thinking, अगर आपके पास है एक कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय खुशी, हाउ आर यू?
1: आपने जो मुझे कन्फेशन लिख कर भेजी है ऑन इंस्टाग्राम,
3: मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ.
1: एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदात के दिन?
3: सो यार क्या हुआ कि आई वाज ऑन अ डेटिंग ऐप, सो आई मेट दिस गर्ल एंड शी वाज लाइक कि यार ये है वो है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक स्पेन, आई लाइक दैट. तो मैंने बोले कि आई नो फ्रेंच, I know Spanish also. I've been there many times.
1: ये सच था कि नहीं?
3: पंगा नहीं यार, मैं जज्जर से आगे नहीं गया हूँ. हरियाणा में रहते हैं मेरे चाचा जी, उनके यहाँ जाता हूँ मैं लास्ट. मुझे नहीं पता सीन है कहाँ, वो तो मैं फिल्में देखता रहता हूँ, मुझे समझ रहते हैं. जो लड़की है जो मुझे मिली है वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा वो है, वो होते हैं ना जो जाट टाइप के लोग जो थोड़ा सा कम समझते हैं चीजों को.
1: ऐसे नहीं बोल सकता यार, तू इसे काटना पड़ेगा. बस वो उन टाइप के लोग हैं जो मतलब थोड़ी सी जो भी बोल जाट नहीं बोल सकता, ठीक है?
3: जो जो लड़की मुझे मिली है ना वो एक्चुअली उनको लैंग्वेजेस का उनको पता नहीं है ज्यादा, मतलब समझ नहीं पाते. उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ठीक है. सो व्हेनेवर वी गेट इंटीमेट ना नो, सो शी आप लैंग्वेजेस का उनको पता नहीं है ज्यादा, मतलब वो समझ नहीं पाते. उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ठीक है. सो व्हेनेवर वी गेट इंटीमेट ना नो, सो शी आस्क्ड मी टू

0: इंग्लिश में. लेकिन लाइक एग्जाम्पल तो दीजिए हमारे जनता को और मुझे कि जब लाइक मान
1: क्रोसो
0: लीजिए.
1: बेबी क्रोसो लेसन मुझे नहीं पता क्या होता है ये सब, पर ठीक है.
0: दिस साउंड सो कन्विंसिंग. आप जो भी कह रहे थे आई वॉन्टेड टू से ऑफ कोर्स
1: आई कैन टोटली अंडरस्टैंड.
0: आई एम श्योर यू कैन टोटली अंडरस्टैंड. मुझे लगता है कि आपको आपकी बंदी को अगर लग रहा है कि आप क्रोसॉन ला फ्रम्बोआ बोल रहे हो और उसको लग रहा है कि ये फ्रेंच रशियन है, वाई स्टॉप द गेम नाउ? आपको रोशिफाई कर
1: आई
0: दूं
1: डोंट वांट टू स्टॉप द गेम, आई जस्ट वांट टू कम क्लीन.
0: बिफोर यू से जलेबी बाई, दैट्स इज गोना रुइन योर गेम.
1: या
0: अगर आप मुझे एक सेंटेंस अपने ये फेक रशियन फ्रेंच जो भी स्पेनिश में एक सेंटेंस बोल दो कि मैं आपको रोशिफाई कर दूंगी.
1: पक्का वैसे बोलूंगा, प्लीज ट्राई करता हूँ. रोशन बॉय खुशो खुशो खुशो
0: यस, यू हैव बीन रोशिफाइड. वन
2: सेकेंड,
0: वट एवर दिस वॉज, ओके, थैंक यू वेरी मच. और मुझे भी ऐसा लग रहा था ये कुछ और ही हो रहा है. ऑन दैट नोट, अगर आपके पास है कोई सीक्रेट कन्फेशन, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इनक्रेडिबल ट्रिक जो मैंने कुछ साल पहले सीखी थी टू हेल्प मी एंजॉय थिंग्स जो मुझे करना पसंद नहीं था. कभी कभी ऐसे होता था कि मैं बर्तन ड्यूटी पर होती थी. अब बर्तन करने मुझे कुछ खास पसंद नहीं होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 साल पहले. लेकिन अगर मेरी बारी होती थी तो मुझे बर्तन धोने होते थे. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज देयर इज दिस इनक्रेडिबल टेक्निक कॉल्ड डोपामाइन एंकरिंग. अगर आप एक ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद है उसे एक ऐसे काम के साथ क्लब करते हो जो आपको नहीं पसंद, आपका ब्रेन ट्रिक हो जाएगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एंड अप एंजॉयिंग द थिंग दैट यू डोंट लाइक बिकॉज आप उसे एसोसिएट करते हो विद द अदर थिंग दैट यू लाइक. सो आई टेल यू व्हाट आई डिड. जब मुझे बर्तन धोने होते थे मैं पीछे आरडी बर्मन या किशोर कुमार के गाने चला लेती थी. अब बिकॉज मेरे ब्रेन को पता था कि आरडी बर्मन के गाने तो हमें पसंद हैं, धीरे धीरे करके मेरे ब्रेन को लगने लगा कि हमें बर्तन धोना भी पसंद है क्योंकि ये दोनों चीजें मैं एक टाइम पर कर रही थी. तो अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पसंद, दैट कुड बी डूइंग योर मैथ्स एल्गोरिथम और इट कुड बी डूइंग योर एक्सेल शीट्स काम के लिए, अगर आप बैकग्राउंड में कुछ और ऐसा कर रहे हो विच यू एक्चुअली फाइंड प्लेजरेबल, दैट कुड बी लिसनिंग टू द साउंड ऑफ अ वाटरफॉल या कुछ भी, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके देखो एंड यू विल बी अमेज्ड एट द इफेक्ट दैट डोपामाइन एंकरिंग हैज एंड यू आर वेलकम फॉर इट. और ये सब मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच. और जिसके पास लव है उसके पास सब है. And I love you loads.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Mirchi.
1: Isca bana, pusca bana, saca bana. Ya bana. Burga, burga. La vida para la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
2: या ऑफ कोर्स.
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
2: हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो.
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है. लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है. एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता
3: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार.
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेज की.
3: अच्छा अच्छा.
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ओ कुड़ियो गुड़ की

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लफ्ज अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात ये है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना। जी, इस नाम से भी फिल्में बनती थी। इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन ने शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड नहीं देखता है, आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है, क्या है?
5: चाकू,
4: लग जाए तो खून निकलाता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
6: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: मुर्गा मुर्गा
2: नबीत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
4: नहीं, कौन बात कर रहा है?
5: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
4: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
5: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
4: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
5: ओ मेरी बात सुन,
4: कौन बात कौन कर रहा है?
5: ओ महेश।
4: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
5: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
4: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
5: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
4: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
5: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
4: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
5: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
4: फिर वही बात को लेकर आ गया?
5: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
4: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
5: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
4: वाली बातें कर रहा
5: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
4: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
5: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
4: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
5: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
4: भाई तू है कौन?
5: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
4: हाँ रॉन्ग नंबर है।
5: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
4: राइट नंबर ले
5: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
4: अरे रॉन्ग नंबर,
5: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
4: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
6: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हेलो
8: हेलो,
7: कौन?
8: हेलो विपिन,
7: कौन बोल रहा है?
8: आहिस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
7: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
8: आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
7: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है
8: भाई? मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
7: पहले किया था।
8: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
7: ऑनलाइन की थी।
8: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
7: जाना जरूरी है?
8: कहाँ जा रहे हो?
7: दुबई।
8: अच्छा तो दुबई जाना है
7: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
8: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
7: हाँ ठीक है ठीक है,
8: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
7: आपने सही कह रहे
8: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
7: नहीं बोलना।
8: भाई साहब एक बात बताऊँ?
7: बताओ।
8: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
7: मैं तो पागल है क्या?
8: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
7: करवा देना भी है आपसे।
8: मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
7: सॉरी।
8: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
7: ओके।
8: आई लव यू।
6: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जानी
0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ,
9: पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे सवालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
2: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
1: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
2: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा
0: मंगा रेसा
1: सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
2: जानी ये हमारा स्पेशल शो है राजकुमार स्पेशल।
3: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
4: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
3: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं सही में, इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लासेस, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे सारे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी।
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ क्या था।
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ।
3: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर।
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला।
3: अरे
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में से एक है पाकीज़ा फिल्म का ट्रेन वाला सीन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स है वो डायलॉग जो राजकुमार साहब ने कहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है शायद इसीलिए वो आइकॉनिक बन गया है। तो सीन कुछ यूं होता है, राजकुमार साहब का जो किरदार है वो आनन फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, इतफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: तेरा क्या होगा कालिया
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
1: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था, क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।
1: पुरानी जींस चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म हीर रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो उनके ढेंटड़ एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझ में भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू इस सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं, जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब की एक पॉपुलर इमेज ये थी कि वो बहुत आउटस्पोकन, बिंदास, इसेंट्रिक, सनकी टाइप के थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे तो थे ही, लेकिन उनकी एक दूसरी साइड भी थी जहाँ वो बहुत ही काइंड, मॉडेस्ट और नरम दिल के थे। लेकिन यहाँ पर हम उनका एक सख्त डायलॉग सुनने वाले हैं वक्त फिल्म से। एक्चुअली 1965 की वक्त फिल्म है जिसने उनकी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी को एक पहचान दी। इसमें उनके डायलॉग्स काफी हिट हुए थे, खास करके चिनॉय सेठ प्ले कर रहे रहमान के साथ जो उनके इंटरैक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरैक्शन सुनते हैं।
2: चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता, चिनॉय सेठ।
1: तो ये एंड में जो आवाज आई ना, तो इसमें वो इस सीन में वो गन शॉट से दो लैंप फोड़ देते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को राजकुमार साहब के डायलॉग्स बहुत महंगे पड़ते थे, कभी वो लैंप फोड़ देते थे, कभी ग्लास तोड़ देते थे। खैर, नरम दिल इंसान जब गुस्सा करता है तो काफी कड़क हो जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात,
3: कौन बात, कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
3: वाली बातें कर रहा
4: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
3: यार।
5: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार साहब जिस तरह से मीना कुमारी जी से प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार करने वाला सबको मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मोहब्बत के लिए इस फिल्म में वो अपने घर वालों से बगावत कर लेते हैं और इस बगावत वाले सीन के बाद ना एक सीन होता है जहाँ पे ये दोनों राजकुमार और मीना कुमारी एक बालकनी में खड़े होते हैं और बालकनी से सामने से नजारा दिख रहा होता है, पहाड़ होते हैं और झरना बह रहा होता है। और इसमें ना सिचुएशन कुछ यूं होती है कि मीना कुमारी जी ऐसा नाटक कर रही होती हैं कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं। तो इस सीन में सुनिए इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है।
2: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
3: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
1: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: कितनी ही सॉलिड होगी वो डायलॉग डिलीवरी जो राइटर्स को अच्छे डायलॉग्स लिखने पर मजबूर कर देती होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी ही डायलॉग डिलीवरी करते थे राजकुमार साहब। किसी भी फिल्म में राजकुमार साहब हो, ये तो तय होता था कि उसके डायलॉग एकदम धांसू होंगे। ऐसी एक फिल्म थी लेट 80s की, मरते दम तक। इस फिल्म के उनके कुछ डायलॉग्स काफी पॉपुलर हैं, सुनिए जरा।
2: हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटिया नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।
1: क्या बात है भाई, वैसे आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी ना, प्लीज देखें, खास करके इसके दो ग्रेट एक्टर्स के लिए, राजकुमार साहब और ओम पुरी साहब। दोनों इसमें गैंगस्टर प्ले करते हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, और क्या डायलॉग बाजी है दोनों के बीच में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Jani, ye Rajkumar special show hai. Charu ke saath. Purani jeans par. Suno, sun rahe ho na? Mirchi par.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई ऐसा सुनने में आता है कि राजकुमार साहब के फिल्मों के सेट पे अलग ही तरह के टैंट्रम्स होते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बहुत पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग तो थे, लेकिन उनके टैंट्रम्स भी होते थे। जैसे कि उनको सफेद जूते पहनना बहुत पसंद था। कई बार यूं भी होता था कि सीन में वो जूते सूट भी नहीं कर रहे होते थे या रिक्वायर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन उनको पहनने होते थे। वैसे चाहे डिशुम डिशुम, ढेंटड़न, एक्शन टाइप के रोल्स हों या सॉफ्ट रोमांटिक डायलॉग्स हों, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी पार एक्सेलेंस। उनकी हीर रांझा फिल्म का ये डायलॉग सुनिए जरा।
2: मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में, दिल में हीर की तस्वीर देखोगे।
1: क्या बात है। और इस फिल्म में उन पर पिक्चराइज्ड एक गाना, वो तो एक तरह का एंथम बन गया था उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। इनफैक्ट आज भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आप अपने लाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से बेजार हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, और ये गाना सुन लें तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: इच्छा है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या बच्चों की किताबें और मूवीज भी हमारी सोच और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप जो कह रही हैं वो सीएस लुईस जो है वो भी कहते हैं। सीएस लुईस वो इंसान है जिन्होंने नार्निया की पूरी दुनिया बनाई, उन्होंने लिखा नार्निया को, फेरी टेल है, परियों की दुनिया है एक तरह से। और वो कहते थे, खुलेआम कहते थे कि जब मैं 8 साल का था तो मैं छुप छुप के कॉमिक्स पढ़ता था, लेकिन जब मैं 50 साल का बना तो मैं खुलेआम कॉमिक्स पढ़ता था और वो दुनिया ही बना दी मैंने।
4: कॉमिक्स के अंदर बहुत डेप्थ होती है,
3: बिल्कुल होती
4: ऐसी
3: है,
4: ऐसी बात नहीं है। आपको लगेगा वो कॉमिक है, लेकिन समटाइम्स एनिमेशन ग्राफिक कॉमिक्स इनके अंदर जितनी, इनफैक्ट इवन टॉम एंड जेरी आदि के अंदर भी,
3: और आज भी देखने में कितना मजा आता है।
4: मजा भी है पर बहुत टीचिंग्स भी है,
3: बहुत सारे
4: अंडरस्टैंडिंग भी है। यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम एनीवेयर। सी, अगर एक बुक, म्यूजिक आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, आपको और किसी चीज की कंपनी की जरूरत भी नहीं है, यू वेरी इमोशनली स्ट्रांग।
3: लेकिन जब उसका इम्पैक्ट कहीं और मेरे एनवायरमेंट में हो रहा है, चाहे मेरे प्रोफेशन में हो रहा है या पर्सनल लाइफ में हो रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं?
4: प्रोफेशनल में वो तो आपने कहा कि अप्रेजल तो अच्छा है,
3: नहीं अप्रेजल उनको फिर बोला गया कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है लेकिन क्योंकि मैं तुमको ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम इतनी इमेच्योर हो, तो भाई
4: इस बेसिस पे तो कोई नहीं निकालेगा ना, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही निकालेगा ना। अगर आप परफॉर्म वेल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग वेल, आपकी जो हॉबीज हैं वो आपको डिफाइन करते हैं।
3: निकाला नहीं गया लेकिन उसका जो अप्रेजल वो अच्छा इस वजह से नहीं हुआ, कह रहे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, उनको एक वजह चाहिए थी शायद उनको अच्छा अप्रेजल नहीं देने की।
4: आई पर्सनली फील कि और ही ये कम होता जा रहा है, कुछ छोटी छोटी ऐसी हॉबीज होना जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं या अच्छा फील कराते हैं या हैप्पी फील कराते हैं, वो जरूरी है। एज लॉन्ग एज वो कंटेंट एम्पावर कर रहा है, उस कंटेंट के अंदर कुछ भी वायलेंस नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, वो कंटेंट की क्वालिटी आप चेक कर लें, फिर चाहे वो कॉमिक है, चाहे वो कोई वीडियो गेम है, चाहे वो कोई टीवी शो है, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम की रील है, एज लॉन्ग एज अगर वो कंटेंट आपको एम्पावर कर रहा है, आपको अच्छा फील करा रहा है, आपको बेटर पर्सन बना रहा है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू।
3: तो सीएस लुईस जिन्होंने नार्निया की दुनिया बनाई, वो कहते हैं कि द ऑब्सेशन विद सीमिंग ग्रोन अप इटसेल्फ इज अरेस्टेड डेवलपमेंट। बेसिकली बड़ा होना ही नहीं चाहिए, बच्चे बन के रहो, बहुत खुश रहोगे।
4: बच्चा क्या होता है, बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, छोटी छोटी चीजें एंजॉय करता है
3: और भूल भी जाता है जल्दी, अगर कुछ बुरा भी होता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है, किसी और दुनिया में लग जाता है।
4: बेस्ट पार्ट है कि बच्चे की जो मेमोरी है ना, देखो एक चीज जो हमें नुकसान करती है, गुड मेमोरी को भी पकड़ के रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट एवरीथिंग, यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट।
3: क्या बात है,
4: आप वो ही सोच रहे हैं कि वो हो जाए,
3: ऐसा हो जाता तो,
4: तो वो भी तो एक चीज की एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना।
3: हर मोमेंट को एंजॉय करो फिर आगे बढ़ो, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट।
4: एब्सोल्युटली, वो बच्चा करता है, उसको किसी भी चीज की एंटिसिपेशन नहीं होती।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, हमारे पास एक सवाल आया है, वॉइस नोट भेजा उन्होंने अहमदाबाद से, तो वो वॉइस नोट मैं आपके लिए चला रहा हूँ।
3: हेलो, नमस्कार विशाल भाई एंड बीके सिस्टर श्रेया जी, और मैं पार्शियल ब्लाइंड बना हूँ 3 साल से, और अभी मेरी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मेरा बच्चा, मैं और मेरी मिसिस। मगर मुझे बारंबार ये फील होता है कि वो लोग पहले मुझे जितना रिस्पेक्ट और मुझे जितना कवरेज करते थे या मुझे जितना कोऑपरेट करते थे, वो नहीं कर रहे, और हमारे तीनों में बार बार इसी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। किसी को किसी के ऊपर खुली हुई बात पर भरोसा नहीं पड़ता और अच्छी भी नहीं लगती, कॉन्स्टेंट झगड़े टंटे होते रहते हैं। तो उसके लिए आप ही सजेस्ट कीजिए अब क्या करें, क्योंकि मैं अब डिपेंडेड हो गया हूँ, तो उनके सिवा चलता नहीं है और उनके सिवा रहेगा रह सकूंगा भी नहीं, और उनको ये एहसास है, इसलिए वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हो या मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, वैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो उसका कुछ सुझाव दीजिए ना प्लीज, कि जिससे मैं स्टेबल रह सकूं, वरना मुझे सुसाइडल अटेम्प्ट करने का या तो कुछ घर छोड़ के भाग जाने का ऐसा परेशानियां लगती है, तो सॉल्यूशन दीजिए प्लीज।
4: जो ये कह रहे हैं इनके बात से ऐसा लगता है कि मन इनका बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसमें 2 चीजों की जरूरत है। जब हम कहते हैं हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये थोड़ी बड़ी बात होती है, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, हमें वो चीज ऑलरेडी आ रही है, वरना उतने तक पहुंच गई है। थोड़ा सा इसमें अगर हम थेरेपी की हेल्प लेते हैं तो अच्छा होता है।
2: अच्छा।
4: हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोगों का बिहेवियर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। पहली बात, रिश्ते जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर हमारे घर के ही रिश्ते ठीक नहीं हैं, वरना वो भी हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, हम भी उनके लिए गलत सोच रहे हैं। एक व्यक्ति भी अगर सही सोचना शुरू करे,
2: उससे भी फर्क पड़ता है।
4: इट इज लाइक थ्रोइंग व्हाइट बॉल। अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, ये एफर्ट करें, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे उनके मन को भी चेंज करेगा, उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा। सहयोग तब मिलता है जब रिश्ते में सामने वाला हमारे से संतुष्ट होता है। और संतुष्ट के लिए बहुत सिंपल चीज परमात्मा कहता है, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। छोटों को स्नेह, बड़े को सम्मान, इतना ही याद रखना है। छोटे हैं उनको प्यार दे रहे हैं, बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे वो रिश्ता ठीक हो जाता है। रिश्ता ठीक हो जाता है तो सहयोग है, जो भी आपको कोऑपरेशन है, वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: कभी कभी किसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखना जिंदगी में नए बदलाव की शुरुआत कैसे बन सकता है, आइए समझे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, जब ये कॉमिक वाली बात हो रही थी मेरे दोस्त की, तो आपने जो कहा कि देखिए बच्चा जैसे बने रहिए, आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे माहौल में हम होते हैं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, शायद कभी कभी एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा टॉक्सिक है या पॉलिटिकली चार्ज्ड है, पॉलिटिक्स होता है, और उस केस में आपके परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, आपको शायद नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें?
5: See, one thing that I've realized is कि सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है कि कई बार आपको लगता है आप भी कई पर्सपेक्टिव राइट है और दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है, इसीलिए ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने का कारण ही है कि आप एक लेंस से देखते हैं और आपको लगता है मैं राइट हूँ, शायद जो दूसरा कुछ ऐसा कॉमिक पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है वो गलत है। इसीलिए आप जो करते हैं आपको उसके ऊपर कंप्लीट फेथ होना चाहिए। आपके पास इनफ रीजनिंग होने चाहिए कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। आप कन्विंस्ड होने चाहिए, देन यू विल नेवर बी पुल्ड डाउन बाय अनदर पर्सन। वो कितना भी कहेंगे पर आपके पास रीजनिंग है ना, आप उनको कह सकते हैं या अपने को कह सकते हैं कि दिस गिव्स मी जॉय, दिस गिव्स मी पर्सपेक्टिव, दिस गिव्स मी मोर अंडरस्टैंडिंग,
4: वो आपको
5: क्रिएटिव फ्रीडम, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। देयर आर सो मेनी पीपल, आपने बहुत सुंदर कहा कि जब वो कहीं पर इस तरह के फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़े समय के लिए चले जाते हैं, दे बिकम क्रिएटिवली चार्ज्ड, उनको एक नया आइडिया, क्योंकि मन बहुत उथल पथल में होता है। कभी कभी इस प्रकार का कोई हॉबी है, किसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के लिए कॉमिक पढ़ना होता है, किसी के लिए बीच के पास जाकर के बैठना होता है, दैट गिव्स देम अ न्यू आइडिया।
4: लेकिन कभी कभी क्या होता है सिस्टर, इसको गलत बताया जाता है। जैसे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जानता हूँ जहाँ पर आप ऑफिस में फेसबुक नहीं यूज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे नहीं जा सकते, और मुझे लगता है आप जितना बांधने की कोशिश करोगे लोगों को, वो उतने ही तरीके निकाल लेंगे आपके रूल्स को नहीं फॉलो करने के, तो काम तो आपका वैसे ही नहीं हो रहा है। ये सही तरीका है एक ऑफिस को चलाने का?
5: सही तरीका होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ हर एक अपने आप डिसिप्लिन से चले, वो सही तरीका होता है। वे यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ आपको कुछ बार बार टोकना नहीं पड़ता, नोट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा किसी को देखना नहीं पड़ता, पर हर एक विलिंगली, चाहे वो एक मेडिटेशन सेंटर है, चाहे एक ऑफिस है, चाहे वो घर है, हर जगह कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है,
4: वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करे।
5: वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद से दिल हो वो करने की। लेकिन जब वो एनवायरनमेंट नहीं होता तो फिर चाहे वर्ल्ड के लेवल पर, घर के लेवल पर, एक जो कॉमन चीज दिखाई देती है, नियम नियम नियम, रूल रूल रूल, व्यक्ति एनीबडी एज अ सोल वी वॉन्ट टू बी फ्री, वी डोंट वॉन्ट टू बी बाउंड बाई टू मेनी रूल्स। वो रूल्स फिर वो कंट्रोल में जाता है, कंट्रोल आपको बॉन्डेज की फीलिंग दिलाता है, फिर वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने लग जाता है। सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ कोई अपने आप ही गलत नहीं करे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब इम्प्लॉयज किसी लीडर के डिसीजंस का विरोध करने लगे तो एक अच्छा लीडर उस परिस्थिति को कैसे संभाले, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, यूर राइट, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है जहाँ रोल के बेसिस पे आपको लगता है क्योंकि मैं बॉस हूँ सबको मेरी बात माननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक विजन होता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी कोई नई चीज लाने की कोशिश की जाती है तो ज्यादातर लोग रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो यूज टू नहीं होते। तो उस केस में कभी कभी जो सीईओ होता है या जो ओनर होता है या जो भी बॉस होता है उनको ये बोलना पड़ता है कि भैया देखो ऐसा है, यही हम करेंगे, तुम करके तो देखो एक बार।
4: नहीं, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका विजन बिल्कुल आपको पता है कि राइट है, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आप विजनरी हैं, फास्ट साइटेड हैं, आप वो देख सकते हैं जो शायद आपकी टीम नहीं देख सकती, इसीलिए आप उस पोजिशन पर हैं। पर जब आप वो चीज पहली बार शेयर करते हैं वो रेजिस्टेंस आता है क्योंकि वो चीज नहीं देख पाते। आपको फर्स्ट मीटिंग में उस रेजिस्टेंस के लिए तैयार होना चाहिए और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम यही करेंगे, वो कंट्रोल है। आपको उस मीटिंग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये शायद वो चीज नहीं देख सकते तो शायद रेजिस्ट करेंगे, और बहुत अपनी बात कह करके टाइम देना चाहिए। देन यू शुड हैव अनदर मीटिंग। आप अपने बात पर टिके रहे वो बात नहीं है, पर आप समय दें कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके और आप सेम पेज पर आ सके, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि अगर आपका विजन बहुत सही भी है पर टीम अलाइंड नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफल वो तभी होगा क्योंकि सब मिल करके करेंगे। संगठन की बहुत शक्ति है, वो गोवर्धन पर्वत के लिए कहते हैं कि सबकी एक एक उंगली से भी पहाड़ उठ गया। अगर वो संगठन की शक्ति नहीं होगी तो विजन ठीक होकर के भी फेल हो जाएगा। आपको लगेगा विजन गलत था, विजन गलत नहीं था लेकिन टीम अलाइंड नहीं थी। तो उसमें थोड़ा स्पेस देना पड़ता है कि एवरीबॉडी कम्स ऑन वन पेज।
3: बिल्कुल, वैसे भी मैराथन है, सोलो रेस तो है नहीं,
4: सोलो रेस नहीं कर पाएंगे, टीम के बिना नहीं कर सकते। मालिक बन करके राय दे लेकिन देन स्पेस दें। सी, हमेशा करना वही चाहिए जो मेजोरिटी को ठीक लगता है, सफलता उसमें मिलती है। आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो। इंटेंट होना चाहिए जो, जैसे यहाँ पर हो सकता है कंपनी के भले के लिए क्या है, घर में हो सकता है परिवार के भले के लिए क्या है, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हो सकता है, जो हमारा एम है। जब आप ऐसा करके टीम में या आप मीटिंग करते हैं तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा आइडिया स्वीकार किया गया या उसका किया गया। इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अस टुगेदर ट्राइंग टू हैव वन एम, फिर उसके अंदर सफलता मिलती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। वो लिखती हैं कि मैं भगवान में आस्था रखती हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जीवन की तकलीफों के कारण ईश्वर पर विश्वास खो चुके हैं। उनका सवाल है, अगर आज भी परेशानियां पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो बिना याद हुए उन कर्मों की सजा क्यों? फिर इस जन्म के अच्छे कर्मों और प्रार्थना का क्या महत्व है, और क्या हमारे वर्तमान कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है?
3: तो ये दो तीन सवाल हैं। पहली चीज तो कर्म शरीर नहीं करता है। कर्म आत्मा करती है, इसलिए टाइटल भी क्या देते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा।
2: जी बिल्कुल।
3: तो जो हमें लगता है कि इसी जन्म में हो जाए, ये जन्म केवल एक बॉडी के लिए है, बर्थ हुआ डेथ हुआ। पर जो कर्म आत्मा ने किया वो अपने कर्मों का हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड ले जाती है।
2: अच्छा।
3: उसी अनुसार अगला जन्म भी होता है।
2: जी।
3: जन्म में भी आप देखते हैं, आपको वो दिखाई देगा ना। कई बार हम कहते हैं जन्म से ही इसको दिखाई नहीं देता, जन्म से इतना बीमार है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है। तो वो पास्ट के कर्मा का भी इम्पैक्ट है, और आगे भी जर्नी में वो कभी ना कभी रिटर्न होंगे, पर कब होंगे वो नहीं पता।
2: नहीं पता,
3: बिकॉज इट इज डन बाय द सोल एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू कम बैक टू द सोल। अब अगर मैंने ही कर्म किए और मुझे ही उसको सामना करना है, तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, या भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? हम भगवान को इसलिए कई बार लोग याद करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन भगवान भी इस चीज की समझ देता है कि मैं किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
2: अच्छा, आप ही को करना है?
3: नहीं, अगर आपके बच्चे का होमवर्क है तो आप करेंगे।
2: नहीं, सही बात है।
3: और आप नहीं करेंगे तो आप कोई उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो बच्चे का होमवर्क है, बच्चे का होमवर्क बच्चे को ही करना पड़ेगा। आप हेल्प कर सकते हैं,
2: गाइड कर सकते हैं।
3: आपके पास उससे 100 times ज्यादा मना उस चीज की नॉलेज है, वो आपके लिए बहुत इजी है। ABCD भी लिखना है वो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए बहुत इजी है। तो जैसे मुझे ये समझ होती है कि ये बड़ा चैलेंज है, मैं कमजोर हूँ लेकिन सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो उससे मिला हुआ विजडम, समझ भी तो चाहिए ना। आधी चीजों में तो हमें ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है, इस चीज का सामना कैसे करना है, इस समय क्या सोचना है, इस समय क्या बोलना है, अपने को क्या समझाना है। तो विजडम, और विजडम के बाद पावर। कई बार सत्य पता होता है लेकिन सत्य पर चलने की ताकत नहीं होती।
2: सही बात।
3: तो सत्य और सत्य पर चलने की ताकत वो हमें प्रार्थना से मिलती है, वो भगवान को याद करने से मिलती है कि आगे का कर्म हमारा ठीक हो।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहाँ टकरार भी ज्यादा होना स्वाभाविक है, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अक्सर कहते हैं कि लड़ाई भी वहाँ घमासान होती है जहाँ प्यार घमासान होता है, बहुत ज्यादा जहाँ प्यार उतनी बड़ी लड़ाई, तो फिर ये कैसे how do these go hand in hand?
4: They don't go hand in hand.
3: Okay.
4: They don't go hand in hand because over a period of time, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वो रिश्ता कमजोर होगा।
3: अच्छा।
4: कहीं पर ही एक मार आपको बार बार पड़ रही है, फिजिकल बॉडी में भी अगर एक मार आपको कहीं पर बार बार पड़ रही है, आप ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर होगा, फिर वो कहीं ना कहीं चीज ठीक होने के लायक ही नहीं बचेगी, वो कहेंगे बस अभी इसमें कोई होप नहीं है। ऐसे ही किसी रिश्ते में शुरुआत में क्या होता है, ठीक होता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर एक ऐसी बात हो जाती है कि कोई बड़ी बात ही नहीं होती है, फिर जब झगड़ा होता है कोई बड़ी बात नहीं, एक शब्द में ही हो जाता है, एक लाइन में ही हो जाता है,
3: पाइल ऑन
4: हो जाता है, फिर वो एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर वो कहते हैं दिस इज डन, नाउ इट इज डन, नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप। एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी रिश्ते में झगड़े ठीक हों, क्योंकि वो एक बार जब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो कोई भी चीज में दरार है और कोई चीज में नहीं दरार है उसमें फर्क तो है ही ना।
3: बिल्कुल,
4: कोई चीज में आपने झगड़ के आप ठीक तो करेंगे, पर आप उसको अगर रूटीन बना ले और आप सोचें कि उसके बाद इसका रिश्ते पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर नेगेटिव एनर्जी का ग्रेजुअली रिश्ते के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि हमें हमारे मन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए।
3: सिमान एक फैक्ट्री है जिसका काम है सोचना।
2: हाँ बिल्कुल,
3: और आप कितना भी सोचे वो जीरो थॉट पर नहीं आ सकता।
2: पॉसिबल,
3: मतलब उसको नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि वो सोचना बंद कर दे। नियंत्रित डिसिप्लिन करने का मतलब है कि आप जो सोचना चाहें वो सोचे।
2: हाँ,
3: माना आप सोचना चाहते हैं सोल्यूशन के बारे में।
2: हाँ, लेकिन प्रॉब्लम की तरफ ही बार बार जा रहा है, वो सही नहीं।
3: हाँ, तो वो एक साइन है कि आपका मन वीक है
2: जी।
3: बाकी वो सोचना नहीं बंद करेगा किसी चीज के बारे में। आपको परसों सोचना है पर आपका मन आज ही उस जगह पे जा रहा है। सो उसमें हम कहते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड है
2: जी।
3: उसके लिए फिर अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है कि अपने मन को जहां लगाना है, जितना समय के लिए लगाना है, जो सोचना है, जिस थॉट को क्रिएट करना है, हम मालिक बन के कर सके। क्योंकि मेरा मन है तो मेरी जो चीज मेरी होती है वो मेरे कंट्रोल से चलनी चाहिए। वो मेरी कर्मेंद्री है, मैं मालिक हूँ। तो मेरा मन मेरे ऑर्डर से चलना चाहिए। और जैसे हम किसी भी चीज को डिसिप्लिन करते हैं, आज एक बच्चा है वो कहीं भी हाथ लगाता है, कहीं भी जाता है, आप उसको डिसिप्लिन करते हैं ना, नहीं बैठ जाओ, नहीं आप अभी उठो, नहीं नहीं, ऐसे ही मन के साथ बात कर करके उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है कि ये गलत नहीं सोचना, सही सोचना है। वो कहेगा ऐसे क्यों कर रहा है, उसका संस्कार है, मुझे क्या करना है। तो जैसे आप सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मन नियंत्रित हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: hosting the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
2: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
1: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है।
2: स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
1: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
1: अच्छा।
2: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
1: अच्छा।
2: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
1: Achha.
2: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging, agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। माने इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
1: बहुत खूबसूरत।
2: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन,
1: वेरी नाइस।
2: आप उस समय पर हैं, एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
1: उसका
2: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो अलार्म क्लॉक और इंडियन मॉम्स में ना एक मेजर डिफरेंस होता है. अलार्म क्लॉक जो है वो तुम्हें कभी चप्पल से नहीं मारेगी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई होप मम्मा नहीं सुन रही अभी. आज का तुम्हारा फेवरेट शो शुरू हो चुका है, नया नया दिन शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल तुम शुरू हुए हो या अभी तक बेड पर लेटे पड़े हो या फिलहाल ऑलरेडी ट्रैफिक में अटके हुए हो या परौंठे पलट रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम करने का प्रिटेंड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ में चिपक के बैठने वाली हूँ. अगले कुछ घंटों में हम बॉलीवुड के बिगेस्ट हिट सुनने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, फिल्मी गॉसिप, फन कॉन्वर्सेशन और वो देसी वॉर्म्थ जो सिर्फ एक फेलो देसी ही फील कर सकता है. सब कुछ आ रहा है यहीं पर. एड्रेस है मिर्ची और सुनने वाले हो तो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virpa, la Burga, Mirchi, Burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो बट मैं ध्यान रखता
3: हूँ ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हा?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
3: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे तो मजा आ रहा है यार तू मजे ले रहा फोन करके
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
15: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
16: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab... Mirchi ka.
4: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: कभी नोटिस किया है, हिस्ट्री जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होती है। एक मैसेज इंस्पिरेशनल होता है और अगला ही शॉकिंग हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और हिस्ट्री की बात चली रही है तो लेट्स फाइंड आउट आज का दिन क्यों स्पेशल है। 2nd of July, सबसे पहले चलते हैं 1776 में, जब अमेरिका के लीडर्स ने ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के फेवर में वोट किया। फन फैक्ट ये है कि जॉन एडम्स को लगता था लोग 2nd of July सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सरप्राइज दो दिन बाद वाला डेट चुना गया फाइनली। एंड 1964 में प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट साइन किया, अ हिस्टोरिक लॉ जिसने रेस, रिलीजन, जेंडर और नेशनलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल बना दिया। फिर आता है 1976, जहां पर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम ऑफिशियली एक देश बन गए। हिस्ट्री में आज के दिन का एक बहुत इमोशनल चैप्टर भी है। 1990 में हज के दौरान मेका टनल ट्रेजेडी में हजारों पिलग्रिम्स ने अपनी जान गंवा दी। आज के दिन हम उन सबको रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। देखा एक दिन में कितना कुछ हुआ था पास्ट में, लेकिन आगे आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स जस्ट फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए ऊपर से कूद के गा।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेशंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: यार कभी लाइफ ने तुम्हें इतना सरप्राइज किया है कि तुमने सोचा हो प्लॉट ट्विस्ट हो जाए और प्लॉट ट्विस्ट हो गया हो। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: कल का बिगेस्ट फुटबॉल थ्रिलर था इंग्लैंड वर्सेस डीआर कांगो। मैच की शुरुआत में ही डीआर कांगो ने 7th मिनट में गोल मार दिया और इंग्लैंड फैंस की कॉफी भी ठंडी हो गई। लेकिन एंटर कैप्टन हैरी केन, यानी कि फुटबॉल का सर्टिफाइड मेन कैरेक्टर। पहले 75th मिनट में इक्वलाइजर और फिर 86th मिनट में एक स्टनिंग विनर। फाइनल स्कोर था इंग्लैंड 2 डीआर कांगो 1। इंग्लैंड सर्वाइव कर गया है। अब राउंड 16 में कोहोस्ट मेक्सिको से टकराएंगे इन व्हाट प्रॉमिसेस to be a blockbuster knockout clash. और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, कल बेल्जियम ने एक्स्ट्रा टाइम में सेनेगल को 3-2 से हराया, जबकि यूएसए ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से बीट करके राउंड ऑफ 16 का टिकट भी पक्का कर लिया है। फुटबॉल फैंस, अब टूर्नामेंट ऑफिशियली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, ये तो तुमको वैसे पता ही होगा। ऐसे स्पोर्ट्स अपडेट्स तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना इतना ड्रामेटिक, ऐसे बॉलीवुड में सास का रोल मिल सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में। चलो जल्दी से देखते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर आज की वेदर रिपोर्ट। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, लेकिन फील हो रहा है अराउंड 82 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इतना डिफरेंस। वैसे दिन भर रहने वाली है सनशाइन ही सनशाइन, कोई रेन चेक नहीं है। लिटरली पिछले 24 घंटों में जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है। मतलब आज अगर तुम बारिश के चलते कोई प्लान्स कैंसिल करने वाले थे, किसी डेट से बाहर निकलने वाले थे, इट्स नॉट गोना वर्क सैडली। लेकिन आफ्टरनून तक मर्क्यूरी 101 डिग्रीज तक पहुंच सकती है और फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक। मतलब आज ह्यूमिडिटी, धूप और हवा मिलकर थोड़ा मिर्चीदार बन रही है, यानी कि हॉट हॉट फील कराने वाले है तुमको। और एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप है, आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों इन इफेक्ट है थ्रू सैटरडे इवनिंग। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी ना हो तो घर पर बैठो एसी के अंदर, और अगर जाना जरूरी है तो अपना पानी साथ में कैरी करो। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 50++++ के साथ वाला, एंड ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनो ताकि तुम्हें जब गर्मी लगे तो तुम अपनी लेयर्स उतार सको। जैसे कल का हाई 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था और आज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाने वाला है, तो वेदर को लगता है थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया है। एंड लेट्स ऑल्सो ग्रेजुएट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। बोले तो मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मेरे सोशल्स इंस्टाग्राम और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: नमस्ते, सलाम एंड गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा अब हम सुनने वाले हैं मिर्ची आवा का थ्री. सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नए एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर से गिफ्ट हुआ ये एयरक्राफ्ट लग्जरी इंटीरियर्स के लिए काफी चर्चा में है. फ्रॉम प्लश कार्पेट्स टू लाइव फ्लैट सीट्स, सेफ टू से ये फ्लाइट डेफिनेटली इकोनॉमी क्लास वाली फीलिंग नहीं देती है. नंबर टू पर इंडिया और जापान की डिप्लोमेसी में एक वार्म मोमेंट देखने को मिला है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वार्मली वेलकम जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए टाकाइची, कॉलिंग हर छोटी बहन. उन्होंने स्पीच की शुरुआत कोनिचीवा से की और एंड किया आरिगातो गुज़ाइमासु के साथ. एंड फाइनली नंबर थ्री पर फुटबॉल फैंस, मेक्सिको की वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेशन इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की जंपिंग और चीयरिंग से नियर बाय साइस्मिक स्टेशन ने ग्राउंड वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लिए. लेकिन रिलैक्स, ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, बस फैंस के एक्साइटमेंट रिक्टर स्केल पर ओवर अचीवर की तरह रिकॉर्ड हो गए. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टा और एक्स पर जाओ तो ढूंढो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Yabana. Murga, murga. La virtua la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Con?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अब ये आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से. अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई.
4: अच्छा, तो दुबई जाना है
3: भाई? जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने एकदम सही कह रहे
4: हैं. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा हैं बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है
4: आपसे. मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
3: सॉरी.
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा. हैव अ सेफ फ्लाइट.
3: Okay.
4: I love you.
3: I love you too.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन.
11: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
12: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे. बिकॉज डायमंड्स aren't जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
13: Oh no!
14: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब एक टेक अपडेट का टाइम आ चुका है. व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लाने की तैयारी में था, जिससे लोग बिना अपना नंबर शेयर किए ही एक यूजर नेम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. साउंड्स फेमिलियर? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया वाइब्स है. एंड प्रिटी मच द आइडिया दैट टेलीग्राम हैज, उसको पूरा कॉपी किया गया है. लेकिन अभी इस फीचर पे पॉज लग गया है. क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा से इस फीचर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा है और रोल आउट को फिलहाल रोकने को, पॉज करने को कहा गया है, जब तक कि कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. अब इसका आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट भाग रही है उतना ही फास्ट उसके रूल्स एंड डिस्कशंस अभी इवॉल्व नहीं हो रहे हैं. बहुत सारे हिडन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं. जैसे देसी लोग जो है ना, वो नंबर, यूजर नेम, पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल सब कुछ निकालने में एक्सपर्ट्स होते हैं. डोंट यू अग्री विद मी? वैसे अगर तुम्हें किसी का यूजर नेम पता करना होगा तो तुम किससे पूछोगे? तुम्हारे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कौन है वो गॉसिप किंग और क्वीन? लेट मी नो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. यहाँ डीएम कर सकते हो. व्हाट्सएप करने के लिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapoorn aamantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Nana Banjaro

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सुनो, अब टाइम हो चुका है कि तुम्हारे बर्थडे ट्विंस कौन कौन है वो पता करें। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विद झप्पीज एंड पपीज। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो तुम शेयर कर रहे हो मार्गो रॉबी के साथ, यस द फॉरएवर बार्बी, एंड साथ साथ में अनदर ब्यूटिफुल डीवा फ्रॉम हॉलीवुड लिंडसे लोहान, वो भी आज ही बॉर्न हुई थी, एंड देन डिज्नी फैंस एशली टिस्डेल, एंड म्यूजिक लवर्स के लिए सिंगर मिशेल ब्रांच एंड हमारी अपनी शर्ली सेठिया। कॉमेडी किंग लैरी डेविड भी आज ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो एक बात याद रखना कि बर्थडे जो है वो सिर्फ एज बढ़ाने का रिमाइंडर नहीं होते थे, प्रूफ कि दुनिया उस दिन थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो गई थी जिस दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो केक खाओ, कैलोरीज को आज लीव पर जाने दो और खुद को सेलिब्रेट करो, बिकॉज यू डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड। एंड तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेलिस्ट लेकर आ चुकी हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड अपने बर्थडे शाउट आउट मुझे भेज सकते हो तुम यहाँ पर। ऑफकोर्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you, Mirchi Mornings. पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
2: Rajwas wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,240. $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं. और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राजज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. Okay.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की रिपोर्टेड वेडिंग की डिस्कशन फुल स्विंग में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलिब्रेशन की कॉस्ट 15 टू 20 मिलियन डॉलर्स तक जा सकती है और एक देसी कनेक्शन भी है। रिहर्सल डिनर इज रिपोर्टेडली इंफोसिस थिएटर में होने वाला है एट मैडिसन स्क्वेयर गार्डन। मतलब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, एक इंडियन टच तो हर शादी में बनता है। नंबर 2 पर किंग खान इज प्लेइंग अ रॉयल इनिंग ऑफ द फील्ड। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड अनवेल किया है। ये स्टेडियम मेजर लीग क्रिकेट का होम ग्राउंड होगा एंड एलए ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट मैचेस होस्ट करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने मैच जीतने के साथ साथ इंटरनेट भी जीत लिया है। ब्रेक के दौरान उन्होंने एक बॉल गर्ल से शर्ट का टैग कट करवाया और फिर मजाक में ऐसा एक्ट किया जैसे सीजर्स से उन्हें चोट लग गई है। बॉल गर्ल एक सेकेंड के लिए बिल्कुल ही फ्रीज हो गई, फिर नोवाक खुद ही हंस पड़े। मैच भी जीत लिया, प्रैंक भी वायरल हो गया। आई मीन कैन समवन स्टॉप दिस गाय। दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन,
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था,
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा,
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे, चल ठीक है निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल
5: कट। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
12: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Welcome to Mirchi Mornings का Rashi Zone Part 1.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is, यानी कि मेष राशि. आज सबको पुश मत करो यार. अगर टीम स्लो चल रही है तो सोलो फ्लाइट मारो. हीरो एंट्री अकेले ही होती है. लकी कलर इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन रिलैक्स. परफेक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर्स में होता है. लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन. लकी नंबर इज 14. जेमिनी यानी मिथुन राशि, बिग चेंजेस आ रहे हैं. नर्वस मत हो, ट्रेलर देखकर थिएटर से कोई बाहर नहीं निकलता है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 27. कैंसर यानी कर्क राशि, जो इश्यूज पेंडिंग है उसको आज टैकल करो. बिल्स और प्रॉब्लम्स दोनों को इग्नोर करने से खुद सॉल्व नहीं हो जाएंगे. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 5. लियो यानी कि सिंह राशि, किसी से थोड़ी खटपट चल रही है. आज ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर दो. देखो लाइफ तो शॉर्ट है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा और शॉर्ट होना चाहिए. लकी कलर इज येलो. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, एक गोल चूज करो और उसके पीछे फुल डेडिकेशन से लग जाओ. स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस. लैवेंडर इज योर लकी कलर. लकी नंबर इज 18. एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1. कुछ गानों के बाद आऊंगी पार्ट 2 लेकर. तब तक तुम मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिंस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून and stay hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम

0: With Priscilla, it's hot.
1: देखो यूनिवर्स का डीएम आया है तो मैं बताने आई हूँ. मैं बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स लेकर राशि जोन पार्ट द्वितीय.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी तुला राशि, करियर में नए डोर्स खुल सकते हैं. कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा तभी जीपीएस भी नया डेस्टिनेशन दिखाएगा. लकी कलर इज रॉयल ब्लू. लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो काम अवॉइड कर रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मूड खराब करने की जरूरत नहीं है. मस्त प्लेलिस्ट लगाओ लाइफ में और अपना काम करते जाओ. लकी कलर इज मरून. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, माइंड को फ्रेश आइडियाज की फ्रेश एयर दो. पुरानी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ चुका है. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 30. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, बिजनेस या मनी को लेकर टेंशन कम करो. कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करता है. बिलीव इन योर सेल्फ. लकी कलर इज ब्लैक. लकी नंबर इज 8. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हर गोल अचीव करना जरूरी नहीं है, कभी कभी टारगेट एडजस्ट करते हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना चाहिए. डिटूर करने पर भी डेस्टिनेशन पर ही पहुंचोगे. लकी कलर इज आक्वा ब्लू. लकी नंबर इज 24. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, किसी की नेगेटिविटी को फ्यूल बना लो. आज प्रूव मत करो, सिंपली शाइन करो. सक्सेस खुद इंट्रोडक्शन देने आएगी. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 33. एंड दैट्स इट. योर राशि जोन पार्ट 1 and 2 आर डन. मैं और प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप. मीनवाइल चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस मेरे दोस्त, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं पर रैप अप करने का टाइम आ चुका है। मेरा नाम है प्रिसिला, लेकिन जाने से पहले एक मस्त फन अपडेट देकर जाती हूँ। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जारेड आइजकमैन ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉमिस किया है। अगर यूएसए फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत जाता है तो नासा एक फुटबॉल और यूएस टीम की साइंड जर्सी मून पर भेजने वाले हैं। उन्होंने बड़ा फिल्मी कॉन्फिडेंस भी दिखाया है और कहा है, लोग कहते हैं यूएसए वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, लोगों ने मून लैंडिंग के बारे में भी यही कहा था। अब देखो, ट्रॉफी यूएसए आए या ना आए, एक बात तो पक्की है कि फुटबॉल फीवर जो है वो अर्थ से लेकर मून तक पहुंच रहा है। वैसे हम देसी लोगों का बस चलता तो हम एक डब्बे में घर का बना खाने का एक डब्बा, उसके साथ साथ फरसान पापड़, उसके साथ साथ कुछ स्वीट डिशेस, कुछ हमारी फैमिली फोटोज, कुछ इंडियन स्नैक्स और चाय कॉफी ब्रेकफास्ट तो पैक करके पक्का भेजते हो, और वहाँ भटकते हुए किसी एलियन को मिल जाता और वो एंजॉय करता हमारी डेलिकेसीज। वैसे इससे पहले कि एलियंस ये बैड जोक सुनकर मुझे पकड़ने आ जाए, लेट्स पैक इट अप हियर। आज के लिए इतना ही, यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, और अगर मुझे मिस करोगे तो सोशल्स पे जाओ ना, यानी कि मेरा हैंडल इंस्टा और एक्सपर्ट ढूंढो, एट मिर्ची प्रिस इज द नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है चाय की थड़ी, और वो जो चाय की थड़ी है ना उसे मैं कह रही होती हूँ कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। डोंट यू थिंक इन 90s के गानों से लाइफ कितनी मेलोडियस हो जाती है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And with time, I've realized कि ये जो अंताक्षरी खेल खेल कर हम बड़े हुए हैं ना, इसका असर ये हुआ है हम पर कि हम लाइफ को ही ना म्यूजिकल बनाते रहे हैं। बिकॉज ऑफ अंताक्षरी हमारे गानों की नॉलेज स्ट्रांग हुई, और ऐसी स्ट्रांग हुई कि हम अपनी गानों की इस नॉलेज को हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, हर सिचुएशन में, हर मौसम पर। हमारी हाजिर जवाबी भी नवाबी है, कॉज ये शब्दों के साथ नहीं संगीत के साथ निकलती है बॉस। आप बताओ, आपके दिमाग में अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके तहत कौन सा गाना बज रहा है? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: समीरा रेड्डी को वैसे हमने जो पहली बार देखा शायद वो और आहिस्ता पंकज उदास साहब का जो एल्बम था उसमें देखा होगा, राइट? और कितनी प्रिटी लग रही थी यार उसमें। और जब यही बंदी उठकर मूवीज में आ गई ना, तो मैं तो और बड़ी फैन हो गई यार इस बंदी की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और समीरा रेड्डी की डेब्यू फिल्म विच वॉज मैंने दिल तुझको दिया। ये फिल्म हालांकि हिट नहीं हुई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज काफी कलरफुल फिल्म थी, नहीं? एंड वैसे बाय द वे, ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन ये वो फिल्म है जिसे सुहेल खान ने डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, एंड ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता है कि उन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया है बिकॉज दिस वॉज हिज एक्टिंग डेब्यू। और इसी के साथ वो बॉलीवुड में सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी बन गए टू टेक ऑन अ ट्रिपल रोल इन अ मेजर फिल्म एट वन टाइम। बट डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, सोहेल अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे और वो एक टेक को मल्टीपल टाइम्स दिया करते थे। बल्कि क्रू मेंबर्स का तो ये भी कहना था कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ना बड़ी इंटेंसिटी के साथ रिव्यू किया करते थे आफ्टर द शूट। एंड देयर वाज दिस बाइक वाला सीन इन द मूवी, इफ यू रिमेंबर, यू नो, उस सीन के अंदर जो मोटरबाइक स्टंट था वो सोहेल ने खुद किया था, लेकिन बाल बाल बचे थे उस स्टंट को करते हुए बिकॉज उनको इंजरी होने ही वाली थी। और वो ये जो स्टंट था वो बॉडी डबल के बिना कर रहे थे, तो जो शूट था उसको पूरे एक दिन के लिए रोक दिया गया बिकॉज ये जानना जरूरी था कि इज सोहेल डूइंग फाइन और नॉट। और जब वहां से हरी झंडी आ गई कि हाँ भैया एक दिन का रेस्ट ले लिया, आई एम टोटली फाइन, वी कैन मूव फॉरवर्ड, तब जाके शूट जो है वो वापस से शुरू हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म में ना सिर्फ सुहेल खान ने एज एन एक्टर डेब्यू किया है बल्कि उनके बड़े बेटे निर्वाण खान ने भी डेब्यू किया है। बताऊंगी कुछ ही देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: જય ગુરુદેવ. ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર પિસ્કેટવે આપને અને આપના પરિવારને ગુરુ પૂર્ણિમા અને રુદ્રાભિષેક મહોત્સવમાં સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આપે છે. શનિવાર 1 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપ યજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 7323578200. જય ગુરુ.
3: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
4: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Carrot Lane store on Oak Tree Road. Hurry! Offer valid only from July 3rd to July 5th.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

0: dance hala.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू फिल्म मैंने दिल तुझको दिया सिर्फ सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू ही नहीं थी, उनके बड़े बेटे निर्वाण की भी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के अंदर सुहेल खान और जो उनकी पूरी गैंग है वो सब मिलकर एक बड़ा ही फंकी सा गाना जो इस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट गाना इज शानानाना शानानाना। क्या गाना था, ओहो हो। खैर, गाने पे नहीं जाते, म्यूजिक पे नहीं जाते, इस गाने के पिक्चराइजेशन पे जाते हैं। इस गाने में अगर आपको याद होगा तो देयर वाज दिस वन सीन जहां पर सुहेल खान एक लेडी के पास जाते हैं और उस लेडी का प्यारा सा बच्चा होता है कुछ ही महीनों का, उस बेबी को गोदी में उठाते हैं और समीरा रेड्डी को लुक दे रहे होते हैं। ऑन स्क्रीन तो वैसे वो समीरा रेड्डी को लुक दे रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन ही माइट बी लुकिंग एट द वुमन, बिकॉज दैट वुमन वॉज हिज एक्स वाइफ सीमा, और वो जो बच्चा था दैट वॉज हिज एल्डर सन निर्वाण खान। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम लकी चार्म फॉर हिज फिल्म ही हैड हिज फैमिली कम ऑन स्क्रीन एज वेल। यही नहीं, सुहेल खान ने तो अपने कॉलेज के जो गैंग मेंबर्स थे उन्हें भी इस फिल्म में कास्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि ये जो कॉलेज कैमराडरी वाली जो वाइब है ना वो बनी रहे और वो ना दोस्तों के साथ ही आएगी। तो उन्होंने काफी सारे अपने दोस्तों को भी उठाया ताकि वो अपनी रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आए और उनकी फिल्म कर जाए। वैसे ये फिल्म हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूवी हो सकती है, लेकिन सुहेल खान जिनकी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी उनके लिए दिस मूवी सीम्स टू बी एन इमोशनल। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक मूवी के पीछे वैसे ही इमोशंस होते हैं जो खाना बनाने के पीछे होते हैं, 'cause when someone cooks ना तो पूरे दिल से, मेहनत से, लगन से, चाह से और आस से खाना बना रहा होता है इंसान कि बस सबको पसंद आ जाए। अगर वो डिश अच्छी नहीं होती है तो लोग उसमें बुराई करने में जरा पीछे नहीं हटते हैं, और जिस बंदे ने इतनी एनर्जी दी है, इतना टाइम दिया है अपना, उस बंदे को डेफिनेटली बुरा तो लगेगा ही। सेम इज विद फिल्म्स, कि जब कोई फिल्म बन रही होती है ना तो मेहनत तो बॉस उतनी ही जाती है उस फिल्म को बनाने में जितनी की एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर में गई होगी। उतनी ही मेहनत से, उतने ही जज्बे के साथ और उतनी ही गुड एनर्जीज पास करते हुए एक फिल्म की शूट हुई होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो क्या होता है, अगर वो फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं हुई ना तो ऑफकोर्स उसे ट्रोल किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। सेम इज विद द कुकिंग ऑल्सो, यार इतने दिल से बनाया, अच्छा नहीं बना तो बुरा भला क्या दिया, दिल तो टूटेगा। जब भी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो यार उसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, बकवास फिल्म है, जाना ही नहीं है। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि किसी ने उसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार ये QR कोड स्कैन करके मेन्यू देखना और ऑर्डर करना फील नहीं देता यार।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। And off lately, I can see कि कैफेज और रेस्टोरेंट्स में हर टेबल पर स्कैनर लगा हुआ होता है। स्कैन करो, मेन्यू देखो और ऑर्डर कर दो। लेकिन जैसे चावल हाथ से खाने में मजा आता है ना, वैसे ही ऑर्डर देने से पहले मेन्यू को फील करने में, उसके पन्ने पलट पलट कर उसमें गुम हो जाने में मजा आता है कि अरे यार, मुझे एपेटाइजर्स में चिकन विंग क्यों नहीं मिल रहा, तुझे तो मिल रहा है। एंड देन जवाब आता है कि तू गलत पेज पर चेक कर रही है पागल। एंड देन ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड कि किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट ने मेन्यू को डिजाइन कितने अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप बताओ, ये बात फोन पर ऐप से मेन्यू देखने में कहाँ आती है यार। पहले किताबें और अब मेन्यू, दोनों ही फोन पर आ गए। और जिस तरह से डेटिंग लाइफ चल रही है ना, लगता है कि अब पक्के रिलेशनशिप्स भी फोन पर ऐसे ही स्कैन कर ही मिलेंगे, हकीकत में तो ना मिल पा रहे। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
1: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
2: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
3: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
8: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
9: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
10: లిస్నర్ మే బ్యాక్ టు బ్యాక్ గానా సునేగా,
11: బ్యాక్ టు బ్యాక్ గానా సునేగా.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Oxford Dictionary.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज एक वर्ड का मीनिंग ढूंढते ढूंढते तुम्हारी जो याद आई है ना यार, बस उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, सिर्फ तुम्हारी यादों में खो गई। कैसे तुम हमारे लिए हर कभी मौजूद हुआ करती थी हमारे बैग में, मतलब बाकी सारी बुक्स एक तरफ और तुम ऐसे हमारे बैग में हुआ करती थी जैसे कि तुम कोर्स मटेरियल हो और तुम एक तरफ, इतना भार था तुम में। हालांकि तुम हमारे बैग में जो फिट होती थी वो तो छोटी सी थी और थोड़ी मोटी सी थी, और जो घर में मम्मा के पास रखी हुई थी वो तो दादाजी थे भाई। लेकिन मुझे ना तुम्हें उठा के बड़ा इम्पोर्टेंट सा फील हुआ करता था, एज इफ मैं कोई स्कॉलर हूँ। लेकिन जब तुम्हारे अंदर झांकती थी तो समझ में आता था, बेटा अभी सीखना तो बहुत बाकी है। इतने सारे लव्स थे तुम्हारे अंदर कि एक को ढूंढने जाते थे तीन का मतलब पूछना पड़ता था। और सबसे मुश्किल तो ये होता था कि हम किसी वर्ड को उठा के उसका मतलब तो ढूंढ ले, लेकिन प्रोनंसिएशन कैसे ढूंढे। वो प्रोनंसिएशन मुझे कभी समझ में आता था, कभी नहीं आता था। आज के गूगल की तरह नहीं कि आपने बस एक वर्ड का मतलब ढूंढा, उसका प्रोनंसिएशन जो है वो भी उसके साथ आ जाता है और गूगल ही बता देता है कि क्या प्रोनंसिएशन है। पता है तुम्हें, गूगल नामक आज एक चीज आ गई है हमारी दुनिया में जो तुम्हारा काम कर रही है। लेकिन हाँ, एक बात कह सकती हूँ, तुम्हारी जगह नहीं ले पा रही है, क्योंकि तुम्हारी तो बात ही कुछ और थी ना यार। जैसे ही मैम पूछा करती थी कि बताओ कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है, तो बस हम शान से तुम्हें डेस्क पर रखा करते थे और बड़ी गंभीरता से तुम्हारे पन्ने पलटा करते थे, मानो किसी गहरे सीक्रेट की खोज कर रहे हो। यार क्या दिन थे वो। अब तो ना तो कोई तुम्हें बैग में रखता है, ना ही किताबों की अलमारी में तुम्हारी कहीं जगह बची है। लेकिन दिल में तुम हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं थी, तुम तो हमारे स्कूल के दिनों की वो साथी थी जिसने हमें लफ्जों से दोस्ती करना सिखाया। चलो यार, अब ज्यादा इमोशनल नहीं होते, तुम्हारी जैसी डिग्निफाइड दोस्त को चीजी बातें कहाँ पसंद होगी। लेकिन हाँ, एक दिन तुम्हें फिर से मिलूंगी मैं, बिना वाईफाई के, बिना ऑटो करेक्ट के, बस तुमसे एक पुरानी मुलाकात के लिए। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो कभी तुम्हारे अंतर लफ्जों के मतलब निकाल लिया करती थी, लेकिन आज जिंदगी के मायने बताने के लिए कोई नहीं है सिवाय जिंदगी के। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
1: Oh no!
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
0: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी, ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I did not realize कि रानी मुखर्जी के सावलेपन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ये दूसरा गाना है जो उनपे बनाया गया है, कैसेट के साइड ए का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कहीं प्यार ना हो जाए मूवी से सावरिया रे ओ सावरिया। well, जब फिल्म में इस गाने को पिक्चराइज किया गया है तो ऐसा दिखाया गया है कि इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन कि यू नो ये लोग गाना गा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए हैं। एंड सबसे मजाकिया चीज इस पूरे गाने के अंदर इज मुनीश बहल, जिनको हमने पूरी जिंदगी या तो सादे रोल्स में देखा है या विलनस रोल्स में देखा है, एंड यहाँ पर ही इज टोटली इन टू द सीन एंड कैरेक्टर ऑफ अ कॉमिक जीजू। बट हाँ, ये बात भी सच्ची है कि स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाली रानी मुखर्जी रही हैं, जिन्होंने कि अपने सावलेपन को लेकर कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई कि वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या वो खुश नहीं है या वो इसको कवर करना चाहती हैं। अगर ये गाना उनके ऊपर बना है, उनके सावले रंग के ऊपर बना है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए बना है, दैट मीन्स कि रानी मुखर्जी ओन्स एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद हरसेल्फ, हर कलर, हर पर्सनालिटी, व्हिच इज अ बिग थिंग इन द इंडस्ट्री, जहां पर लोगों को उनके लुक्स और कलर से जज किया जाता है। एंड आज तो हम डेफिनेटली इस बात के गवाह हैं कि एवरीबडी इंडस्ट्री में हो या ना हो, दे जस्ट वांट अ कोरियन स्किन। हालांकि हम इंडियंस हैं एंड वी वांट कोरियन स्किन। दूसरी चीज, ये ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स, इंजेक्शंस एंड सीरम्स एंड व्हाट नॉट जो आ गए मार्केट में, उसको लेकर भी इतना ज्यादा रेज आना। एंड आई फील कि यार जैसे हम हैं वैसा हम अपने आप को पसंद क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक रानी मुखर्जी से ये चीज सीखना तब और आज भी वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट बिगनिंग। चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अगला गाना यही वाला आ रहा, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

1984 की फिल्म उत्सव वॉज प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में उन्होंने एक रोल भी किया था जो इनिशियली अमिताभ बच्चन साहब करने वाले थे, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन साहब ने ये रोल नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस पर्सनल रीजंस, क्योंकि उत्सव फिल्म में रेखा थी ना। अच्छा, एक और फिल्म जिसका हम अभी गाना सुनने वाले हैं, उसमें जो रोल अमिताभ बच्चन ने प्ले किया वो पहले राजेश खन्ना प्ले करने वाले थे, और जो रोल राजेश खन्ना ने प्ले किया वो पहले अमिताभ बच्चन प्ले करने वाले थे, लेकिन फिर राजेश खन्ना साहब को जो रोल पसंद आया उन्होंने वो रोल ले लिया, यानी कि अमिताभ बच्चन वाला। दिस फिल्म वॉज 1973 की नमक हराम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi, TNC apply.
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

लिरिसिस्ट अनजान साहब ने 1953 से अपने करियर की शुरुआत की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको काम मिलना शुरू हुआ लेकिन उनका काम खास पॉपुलर नहीं हुआ। 60s में भी उनको काफी चर्चित फिल्में मिली जैसे कि गौदान, बहारें फिर भी आएंगी, बंधन। उनके कुछ गाने पॉपुलर भी हुए लेकिन एक वो जो ड्यू सक्सेस, ड्यू रिकग्निशन है वो उनसे बहुत दूर था। 70s में भी उनके गाने पॉपुलर हुए जैसे कि दो अनजाने फिल्म का एक गाना अगर आपको याद हो, लुक चिप जाओ ना अल्ले आओ ना, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इनफैक्ट उनके ज्यादा पॉपुलर हिट गाने अमिताभ बच्चन साहब पे ही पिक्चराइज्ड हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy और
6: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
9: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ओ भाई भाई भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि सिंगर शैलेंद्र सिंह एक्टर भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनका ये एक्टिंग वाला स्टंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने एक रैंडमली एक फिल्म देखी, अग्रीमेंट फिल्म का नाम है ये, उत्पल दत्त साहब हैं इसमें। और उत्पल दत्त साहब की मुझे कोई भी फिल्म दिखती है ना यूट्यूब पे, मैं फट से देखना शुरू कर देती हूँ। हालांकि इस फिल्म में उनका टैलेंट ऐसे वेस्ट कर दिया गया है। सो इस फिल्म में रेखा है मेन लीड में, जो एक फेमिनिस्ट बनती है। और उनका फेमिनिज्म का डेफिनेशन थोड़ा सा ट्विस्टेड सा है, मतलब वो शादी करने और एक टिपिकल बहू बनने के खिलाफ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया चेंज होता है, और जैसे जैसे नजरिया चेंज होता है फिल्म में उनका लुक भी चेंज होता है। शुरुआत में ऐसे बॉय कट बाल होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर एकदम लंबे बाल हो जाते हैं। सो इसमें उनका जो पति का रोल प्ले करते हैं ना, पति भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट वाला पति, मतलब एक अग्रीमेंट होता है शादी का, तो उसमें उनका पति प्ले करते हैं शैलेंद्र सिंह, सिंगर। मूवी देखो खास नहीं है, मैंने तो यूं ही टाइम पास के लिए देखी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। बट शैलेंद्र सिंह की आवाज टोटली रिकमेंडेड। उनकी आवाज में गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi, TNC apply.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath. Sirf Mirchi par.

अभिमान फिल्म को लेकर एक रूमर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रूमर ये था कि इसकी स्टोरी किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा ठाकुरता की मैरिड लाइफ पर बेस्ड है। इन दोनों की मैरिड लाइफ में मेन दिक्कत ये थी कि रूमा करियर ओरिएंटेड थी, उन्हें अपनी कला अपने काम से प्यार था, जबकि किशोर कुमार चाहते थे कि वो ज्यादा ध्यान अपने घर पे दें, घर संभालें। उनकी थोड़ी कन्वेंशनल सोच थी। खैर, किशोर कुमार को जब इस रूमर के बारे में पता चला तो उन्होंने इस फिल्म के बस दो गाने गाए थे, बाकी भी उन्होंने गाने थे लेकिन वो गाने फिर उन्होंने छोड़ दिए। इसलिए फिल्म के कुछ गाने किशोर कुमार की आवाज में है, कुछ मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। यहाँ जो हम सुनेंगे वो है किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

1987 की सरप्राइज हिट फिल्म थी ईमानदार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में थे संजय दत्त, फरहा एंड रोहन कपूर, जो सिंगर महेंद्र कपूर साहब के बेटे थे। रोहन एक्टिंग भी करते थे, सिंगिंग भी करते थे। इनफैक्ट इस टाइम पे वो काफी पॉपुलर फिल्मों में आए थे। एक तो ये ईमानदार हो गई, फिर यश चोपड़ा साहब की फासले एक मूवी थी जिसमें फरहा के साथ थे, बट समहाउ ज्यादा चल नहीं पाए। लेकिन ईमानदार फिल्म का ये गाना क्या चला क्या था, दौड़ा था, उड़ा था। सुन लेते हैं। प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन, संग बाय आशा भोसले जी एंड सुरेश वाडकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
3: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, ईसलिन.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
11: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: भाई शम्मी कपूर साहब बहुत सारी बातों के लिए पॉपुलर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन अर्ली 80s में उनकी पॉपुलैरिटी में एक और चीज जुड़ गई और ये चीज थी एक एड। और आपको पता है इनके बड़े भाई राज कपूर इनके इस एंडोर्समेंट के बहुत खिलाफ थे, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने ये एड क्यों की, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई डिड एन एड विद अशोक कुमार ओनली फॉर द रीजन दैट आई हैव नेवर वर्क्ड विद अशोक कुमार। It is my, you know, he is my idol, and I wanted to work, and I never had an opportunity. This is the first time I was offered. कि जी एक ad है पान प्राग का, दादा मुनि कर रहे हैं, आप करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगा। I didn't know it was going to get so popular. The ad became so popular that people knew me more by the पान प्राग ad than by Jangli. They forgot I was in movies.
0: Well, 80s में ये एड बहुत पॉपुलर हुई थी और ये एड सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट थी। इसके बाद फिल्म स्टार्स एंडोर्सिंग ब्रांड्स वाले सीन में ना बहुत सारे चेंजेस आए थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: ये चांद सा

घर फिल्म का गाना ब्यूटीफुल सॉन्ग रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। और घर टॉपिक पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल गजलें शेर भी लिखे गए हैं। जैसे अहमद फराज साहब कहते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जॉन एलिया साहब कहते हैं, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। बशीर बद्र साहब क्या लिखते हैं सुनिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हार्ड हिटिंग लाइंस हैं ये, सुनिए आप। लोग टूट जाते हैं एक घर, बशीर बद्र साहब क्या लिखते हैं सुनिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हार्ड हिटिंग लाइंस हैं ये, सुनिए आप। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में।

0: It's 2:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
3: Purani Jeans with Charu. Only

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

आपको पता है 1989 में मैंने प्यार किया में काम करने से पहले मोनीश बहल 4-5 फिल्मों में काम कर चुके थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन क्योंकि उनका करियर एज एन एक्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, उन्होंने अपने दूसरे पैशन फ्लाइंग को अपना करियर बनाने का सोचा। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली, उनको पायलट बनने का लाइसेंस वगैरह भी मिल गया। लेकिन इसी दौरान सलमान खान जो उनके दोस्त थे और मैंने प्यार किया फिल्म में एज हीरो लिए जा चुके थे, उन्होंने नेगेटिव रोल के लिए मोनीश बहल का नाम रेकमेंड किया। इसके बाद इनका एक्टिंग वाला करियर फिर से उड़ान भर गया और उड़ान वाले पायलट वाले करियर को साइड में रख दिया गया। चलिए, जिसकी गाड़ी जहाँ चलनी होती है चल जाती है, जिसका एरोप्लेन जहाँ उड़ना होता है उड़ जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वही पुरानी फिल्मों के एक बहुत ही जाने माने राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे राजेंद्र बेदी और उनके बेटे थे नरेंद्र बेदी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनकी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी थी रोज स्टूडियोज, और लेट 60s अर्ली 70s में एक फिल्म में डायलॉग्स लिखने के लिए ये कोई बंदा ढूंढ रहे थे। तो इनको पता चला कि ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो बहुत ब्रिलियंट प्लेज लिखते हैं। ये बंदे थे कादर खान साहब। इस बारे में कादर खान साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था सुनिए।
1: एक बार राजेंद्र सिंह बेदी या मेरे पास आए, बोले यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जवानी दीवानी, मैं चाहता हूँ आप उसके डायलॉग लिखें। दूसरे दिन मुझे उन्होंने रोज मूवीज में बुलाया, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और मुझे उन्होंने कहा कि ये अभी हम ये महीने भर बाद ये पोर्शन कर रहे हैं, वो मुझे डिटेल में बताया। तो मैं अब सीधा जो है क्रॉस मैदान गया था। क्रॉस मैदान में अब वहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं एक कोने में बैठ के पेड़ के नीचे डायलॉग लिख रहा हूँ। बॉल बार बार आके मुंह में भी लगता है, तो मैं बोलता था भाई जरा संभाल के खेलो यार, तो सॉरी बोलते थे। फिर मैं लिखा जा रहा हूँ, करते करते मैंने 4-5 घंटे में सब लिख डाला था।
0: क्या हुआ जब खान साहब पहुँचे बेदीज के पास, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजिली।
5: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
6: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
7: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: Purani Jeans with Charu. Only on

0: 1972 की फिल्म जवानी दीवानी के मेकर्स राजेंद्र सिंह बेदी एंड नरेंद्र सिंह बेदी कादर खान साहब के पास पहुंचे फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने खान साहब को एक महीने का वक्त दिया कि आप आराम से डायलॉग लिखो, लेकिन खान साहब 3-4 घंटे में डायलॉग्स लिखकर शाम को इनके पास पहुंच गए। और जब ये पहुंचे तब क्या हुआ, खान साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: जब तक वो लोग पी के थोड़ा टाइट हो चुके थे, मुझे देख के उन्होंने कहा, इन्होंने गाली दे के कहा कि इसको समझ में नहीं आया ये पूछने के लिए फिर आया। मैंने कहा सर आपने गाली क्यों बकी मुझे, और नहीं यार कहाँ गाली बकी। मैंने कहा आई कैन रीड योर लिप्स। नहीं बोले यार तुम फिर आगे पूछने के लिए इतना डिटेल में समझाया। बोले मैं पूछने नहीं आया हूँ, मैंने डायलॉग लिख लिए है। व्हाट? अरे बोले यार हम डायलॉग राइटर को देते हैं सीन तो एक दिन और बाद में लेकर आता है। मैंने सीन सुनाए तो सीन सुनाता गया, एक एक उठ उठ के बैठने लगा। नरेंद्र बेदी उठा, रणधीर कपूर उठा, उठते उठते सब बोले यार क्या बात है ये नेक्स्ट हफ्ते से कर डालो। और पूरी इंडस्ट्री में इन्होंने वाविला मचा दी कि यार कमाल उसने सीन लिखे। और एक महीना भर बाद उन्होंने पूरी अपने काम खत्म कर लिया, मुझे 1500 रुपए दिए।
0: तो ये थी कादर खान साहब के ब्रिलियंट राइटिंग करियर की शुरुआत। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: तो जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने जो आइकॉनिक रोल निभाया था, उस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस पता है कौन से एक्टर थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसके लिए फर्स्ट चॉइस थे धर्मेंद्र साहब जी, प्रकाश मेहरा। इस स्टोरी के लिए धर्मेंद्र को कास्ट करना चाहते थे। धर्मेंद्र ने अपना कमिटमेंट भी दिया था और जंजीर फिल्म के राइट्स भी उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि धर्मेंद्र बिजी हो गए, इस फिल्म के लिए शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। और इसी दौरान उनको एक और स्क्रिप्ट पसंद आई जिसके राइट्स प्रकाश मेहरा साहब के पास थे। तब उन्होंने ये दो स्क्रिप्ट्स एक्सचेंज की, यानी कि जंजीर फिल्म प्रकाश मेहरा जी को दे दी उसके राइट्स और एक और फिल्म के राइट्स खुद ले लिए। ये फिल्म थी कहानी किस्मत की, जो धर्मेंद्र जी के दोस्त डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी ने फिर डायरेक्ट की। ये वही फिल्म है जिसमें वो मस्त गाना है जो हम सुनने वाले हैं, जिसमें क्या हैंडसम लग रहे हैं धर्मेंद्र साहब भाई, और क्या उछल कूद मचाई उन्होंने इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ आई का, ओ जर्नल सिंह ओ जर्नल सिंह।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रोबैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं। कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: ऑफ कोर्स
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता
4: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
3: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस। और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रखकर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल इस थ्रो बैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
2: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
1: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ दिन ना बस लकी होते हैं। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी लकीली फ्री कॉफी अपग्रेड मिल जाती है, कभी पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिल जाती है, कभी सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिल जाते हैं, तो कभी रात को फायरवर्क्स एकदम क्लियर नजर आते हैं। तब लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें इतने पसंद होते हैं, क्योंकि हॉलीडेज का मजा ही तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाए। और अगर इस 4th of July आपकी लकी लिस्ट में एक और सरप्राइज ऐड हो जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस 4th of July के सेलिब्रेशन में RK ज्वेल ला रहे हैं थोड़ी और एक्साइटमेंट। आपको बस विजिट करना है RK ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इजल इन न्यू जर्सी, एंड यू विल गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड गेट एक्साइटिंग ऑफर्स। और मजे की बात तो यह है कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, यू विल डायरेक्टली गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स। तो हो सकता है 4th of July आपका लकी डे हो, तो जल्दी से विजिट कीजिए RK ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इजल इन न्यू जर्सी। और मुझे जरूर बताइए कि लकी होने के बाद वो कौन सा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि RK ज्वेल्स जा रहे हो तो लकी तो होगे। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्पररी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Mirchi, Burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है।
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से, और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ,
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: Okay, okay. I love you too.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's पटा।
7: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi, TMC apply.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
9: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
8: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. Apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
17: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए, क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज होती है जहां सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: जय साई राम मिर्ची लिस्टर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। फाइनली टेम्परेचर्स हैव रीच्ड 100 डिग्रीज मार्क। स्टे इनसाइड इफ यू कैन। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स आर मिक्स्ड आफ्टर डिसअपॉइंटिंग हायरिंग नंबर्स। This is encouraging news for more that more homes are coming to the market, which will give buyers a greater chance of finding one that checks off the items on their wish list. Buyers' demand has moderated, some in light of mortgage rates and other economic factors. Buyers still need to be decisive and move quickly when they find the right home. So buying a home shouldn't feel as impossible. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Those who presently own homes and have an FHA loan or a conventional loan with a higher interest rate loan, or if you have a investment property with a higher mortgage rate, call us today and find out how we can save you money on your mortgage payments. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. Lion Mortgage offers conventional loans, FHA loans, jumbo loans. We offer DSCR loans, bank statement loans. So call us today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you. Bye-bye.

0: celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
2: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
3: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब बदल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था। लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सबने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री, लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताजा करते हैं विद दिस सॉन्ग दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
0: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना व्हिच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिडंट नीड बैकग्राउंड डांसर्स, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे जरूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की दिल चाहता है कि जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. La bala. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi, TNC apply.
7: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, muskura kar peesti. Apne ghar ke aangan mein, din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad, chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स aren't जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
10: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
11: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
12: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Sham Shanda, let's do not donkey have a funky time.
17: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे दोस्तों देखिए, इंतजार करते करते फाइनली 4th of July वीकेंड आ चुका है, और जब भी यू नो एक सेलिब्रेशन मोड आता है, यानी 4th of July आता है तो यार लॉन्ग वीकेंड का मजा तो है ही, लेकिन ये साल लॉन्ग वीकेंड ज्यादा स्पेशल है बिकॉज इट्स 250th बर्थडे ऑफ अमेरिका। और सेलिब्रेशंस की बात करें तो सेलिब्रेशन में शॉपिंग तो शहीद होती ही है, तो चलिए आज पूछते हैं बॉबी जी से कि 4th of July की क्या स्पेशल अनाउंसमेंट्स है। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में।
0: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी, और देखिए हैप्पी 250th बर्थडे टू आवर कर्म लैंड।
17: बिल्कुल,
0: जहाँ पे हमने सब अपने कर्म कर रहे हैं ये उतनी ही प्यारी है जितना हमारा मदरलैंड है। सो आज यही हमारी कर्म भूमि है, तो इनका 250 साल है, तो मुझे लगता है कि हम सब सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। और अभी 4th of July मेरे तो बच्चे मतलब बहुत एक्साइटेडली वेट करते हैं, क्योंकि फायर वर्क देखना है, दोस्तों से मिलना है, ऑलरेडी पार्टियां स्केड्यूल्ड है, और स्पेशली जब गोल्ड के प्राइजेस तापमान की तरह वेदर की तरह शूट कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए बात खाने पीने की होती है वीकेंड पे
17: जी,
0: सिद्धि जी
17: बिल्कुल,
0: मैं आपको बता दूं कि ज्वेलरी के अंदर भी एक जलेबी सेट्स आजकल बहुत पॉपुलर है।
17: क्या बात है,
0: राज ज्वेल्स जी, देखिए नाम ही कितना एक्साइटिंग है,
17: नाम ही इतना मिठास है
0: जी। तो जलेबी सेट्स साउथ इंडियन कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है। आप यकीन मानिए ऐसी प्रोडक्ट है कि अगर वो 10 आते हैं तो 12 कस्टमर रेडी होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप गोल्ड के प्राइस का फायदा लीजिए। हालांकि कल से आज गोल्ड $120 अपवर्ड ट्रेंड चला गया है, $4,120। अगर आपको याद हो जून फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था गोल्ड $4,500 ट्रेड कर रहा था, आज $4,120 ट्रेड कर रहा है, और यस्टरडे अराउंड $4,020 पर ट्राउंस था। तो सिद्धि जी इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, आप आइए राज ज्वेलर्स के साथ, वो खूबसूरत सी कलेक्शन ऑफ जलेबी सेट्स देखिए, आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें, ताकि आपको ये चिंता ना हो कि जब आप ट्यूजडे को मार्केट्स वापस ओपन हो लॉन्ग वीकेंड के बाद तो गोल्ड का प्राइसेस और ऊपर चला जाए। तो 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में खूबसूरत सी ज्वेलरी आज आपके साथ घर, 9 किश्तों में पैसे राज ज्वेलर्स को, गोल्ड के प्राइस का बेनिफिट आपको। और सिद्धि जी आपको पता है जैसे शॉपिंग मूड रहता है तो बहुत सारी कॉल्स भी आ रही है, तो मैं उनको अपडेट कर दूं, लिटिल इंडिया ओक्टी रोड पर राज ज्वेल्स और हमारे बाकी सारे फेलो बिजनेसेस, चाहे वो मिठाई की दुकानें हो, खाने हो, ज्वेलर्स हो, कपड़े वाले हो, सब खुले हैं 4th of July पे। सो जो आपके दोस्त दूर दूर से विजिट कर रहे हैं लिटिल इंडिया में, स्मॉल बिजनेसेस को आके सपोर्ट करें, अपना अपना पैशन जिसको बोलते हैं ज्वेलरी गोल्ड खरीदने में राज ज्वेल्स विजिट करें, और इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ अपनी फैमिली को शरीक रखें।
17: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है, अगर आपको लग रहा है कि शॉपिंग का मूड तो है लेकिन यार लिटिल इंडिया शायद बंद हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे जलेबी खाना हो या जलेबी पहनना हो, सब कुछ खुला है, आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। और अगर आज नहीं विजिट कर पा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर कल यानी 4th of July के सेलिब्रेशन पे भी आप पहुंच सकते हो लिटिल इंडिया ओक्ट्री रोड, और स्पेशली विजिट कीजिए rajjewels.com, या आप अपने जो जलेबी वाले सेट के बारे में बॉबी जी ने अभी बताया उसे पहले आप प्री चेकआउट कर सकते हो, तो आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi, TMC apply.
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
0: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
2: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener mein back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's go Nautanki. Have a funky time.
2: दोस्तों, बॉलीवुड का वो एक सुपरस्टार ऐसा है जो कभी रिटायर नहीं होता, ना उसकी एज बढ़ती है, ना उसका स्टारडम खत्म होता है, और उस सुपरस्टार का नाम है नॉस्टैल्जिया। शाम शांता लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। क्योंकि हर साल कोई पुराना गाना वापस आता है, कोई क्लासिक फिल्म री रिलीज हो जाती है, कोई डायलॉग फिर से वायरल हो जाता है, और फिर हम सब कहते हैं कि अरे यार, ये तो बचपन की याद है। तो सच बताऊं, हम फिल्म ना दोबारा देखने जाते ही नहीं है, हम उस वक्त को दोबारा महसूस करने जाते हैं जब जिंदगी थोड़ी और सिंपल लगती है। और शायद इसीलिए आज भी DDLJ अंदाज अपना अपना या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जब भी बात होती है ना, तो डिस्कशंस फिल्म से ज्यादा यादों की हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि अगर एक बॉलीवुड फिल्म थिएटर में री रिलीज हो रही है और आपको उसका फ्री टिकट मिले, तो वो कौन सी फिल्म होगी जो आप फिर एक बार देखने जाओगे? टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI कि सवाल जितना आसान लगता है ना, जवाब उतना आसान है नहीं। क्योंकि यार, इतने सारे मेमोरेबल मूवी है, इतने सारे नॉस्टैल्जिक मूवी है कि एक चुनना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कोशिश कीजिए। और फिलहाल मेरी वो जो फेवरेट मूवी जिसको मैं 1000 बार वापस देख सकती हूँ, उसका गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि फ्रॉम रेडियो मिर्ची और हम पहुंच चुके हैं आरके जूस के शानदार स्टोर पर एंड वी हैव विद अस वो कलाकार जिनकी आवाज सुनते ही लगता है कि तुम हो तो सब अच्छा है, जिनकी आवाज सुन के लगता है तुम हो तो सब अच्छा है। वी हैव विद अस विशाल मिश्रा, प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। थैंक यू विशाल जी। देखिए, इतने दिनों से आप ही के गाने चल रहे हैं पूरे रेडियो पे, एंटायर न्यू जर्सी इज मेस्मराइज एंड यू आर हियर फॉर पागलपन टूर। देखिए, हमारी जो पूरी ऑडियंस है आपके गानों के लिए तो पागल है ही, लेकिन हमें प्लीज बताइए कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दिस पागलपन टूर फॉर टुमारो जब आप आ रहे हो अटलांटिक सिटी में।
1: आपको ऐसा लगेगा जितनी देर भी कॉन्सर्ट चलेगा दैट आप हिंदुस्तान में, आप इंडिया में, यू विल फील इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया एंड इट्स अबाउट मीटिंग द राइट पीपल, द सेंसिटिव पीपल दैट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पीपल लाइक मी थ्रू माय म्यूजिक एंड होपफुली वी विल हैव अ वेरी इमोशनल एंड ब्यूटीफुल मेमोरी टू कैप्चर आफ्टर दिस।
0: दोस्तों मैं एक बात बता दूं, विशाल जी के गाने वो गाने हैं जो सिर्फ गाने नहीं है, जो सिर्फ हम सुनते नहीं है, वो हमारी दिल की कहानियां बताते हैं। एंड वी नो इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन बैक्ड बाय आरके ज्वेल्स। इट्स गोइंग टू बी ग्रैंड, इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल। तो देखिए, इतने विजनरी प्रमोटर है हमारे साथ, इतनी अमेजिंग टीम है, ऐसे में इस जर्नी की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? गोइंग टू परफॉर्म टुमारो एट दिस वंडरफुल वेन्यू।
1: आई थिंक इट्स गोइंग टू बी meeting people that love you and if you see light in their eyes, singing for them is a bliss and I'm looking forward to all those experiences. It's going to be a memorable tour
0: definitely. और एक आखिरी सवाल दोस्तों हम सबकी तरफ से, देखिए जैसे कि मैंने कहा इनकी जो गाने होते हैं वो दिल के जो एहसास है वो हम सब तक पहुंचाते हैं, राइट? तो कल के इवेंट के बाद वो कौन सा एहसास है जो हमारी सारी जो ऑडियंस है वो अपने साथ लेके जा सकती है आफ्टर दैट?
1: ये सवाल तो आपको ऑडियंस से पूछना पड़ेगा हमारे कॉन्सर्ट के बाद, बट आई कैन अश्योर यू फॉर श्योर दैट द टीम हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस विल बिकम वेरी मेमोरेबल फॉर श्योर।
0: थैंक यू सो मच विशाल जी।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी लव स्टोरीज, रोड ट्रिप्स और कमिंग ऑफ एज फिल्म्स अक्सर उन लोगों से आती है जिन्होंने ना जिंदगी को थोड़ा ज्यादा जिया होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक रीसेंट इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने अपने कॉलेज डेज का एक क्रेजी इंसिडेंट शेयर किया था, और उस बात से ना मुझे एक बात याद आई कि इम्तियाज अली की जो फिल्म होती है उनमें कैरेक्टर्स कभी सीधे रस्ते तक मंजिल पे कभी नहीं पहुंचते। मतलब जब वी मेट में वो ट्रेन छूट जाती है, रॉकस्टार में हार्ट ब्रेक एक आर्टिस्ट बना देता है, तमाशा में इंसान खुद को ही ढूंढने निकल पड़ता है। और शायद वजह यही है कि कुछ फिल्म मेकर्स ना कहानियां लिखते हैं और कुछ फिल्म मेकर्स पहले कहानियां जीते हैं और फिर लिखते हैं। और शायद इसीलिए इम्तियाज अली की फिल्म्स देखकर अक्सर लगता है कि ये स्क्रीन प्ले नहीं है, किसी के डायरी का एक पन्ना है। वैसे आप भी बताना कि आपके हिसाब से इम्तियाज अली की वो कौन सी फिल्म है जो सबसे ज्यादा पर्सनल फील होती है। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल इम्तियाज अली के मेरे फेवरेट मूवी का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló?
2: ¿Anji?
3: ¿Vivek ji?
2: ¿Anji, bataye?
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा।
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर थोड़ा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: सेलिब्रेट ब्रिलियंट दिस 4th of July, RK Jewels, आइए स्क्रैच द कार्ड एंड अनलॉक डैजलिंग सरप्राइजेस, कोई परचेज जरूरी नहीं, TMC अप्लाई।
6: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
10: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
11: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
8: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Tera kya hoga, Kalya?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi. It's hot.
16: Sham Sardar, let's do nautanki, have a funky time.
17: दोस्तों, बॉलीवुड में हीरो कौन है, विलन कौन है, ये तो फिल्म देखकर पता चलता है, लेकिन इंडस्ट्री में एक विलन ऐसा जरूर है जो हर फिल्म को डराता है, और वो है रिलीज का डेट क्लैश। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल जब बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस क्लैशेस की बातें होती है ना, मुझे एक ही बात याद आती है कि बॉलीवुड के कुछ सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स फिल्म के अंदर नहीं, फिल्म के बीच हुए थे। कभी लगान वर्सेस गदर एक प्रेम कथा, कभी ओम शांति ओम वर्सेस सावरिया, तो कभी दिल वाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि कई बार ना ऑडियंस डिसाइड ही नहीं करती कि कौन सी फिल्म बेटर है। ऑडियंस बस इतना कहती है कि यार सैटरडे को ना ये देख लेंगे और संडे को वो देख लेंगे। तो जब भी दो फिल्म्स एक ही दिन पे रिलीज होती है, मुझे लगता है ये कंपटीशन कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा देती है, क्योंकि रिलीज डेट क्लैश का मतलब है हमें अपनी कहानी पर भरोसा है। तो दोस्तों आप भी बताना कि बॉलीवुड का सबसे मेमोरेबल बॉक्स ऑफिस का क्लैश आपके लिए कौन सा था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्या वो लगान गदर ओम शांति ओम सावरिया या कोई और। और मेरे फेवरेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस क्लैश का गाना मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Diamond jewelry ki first choice. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaiye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
2: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
0: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
2: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
0: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
2: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
4: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।